हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताए एवं काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे विचार और हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक और बुरी सोच के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशियाँ और सफलता का अनुभव होता है। हमारे विचारों की शुद्धता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर की स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 मिनट हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 सितंबर महीने का रविवार दिन और तारीख है 20। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारे जानकारी, मनोरंजन और तेज दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता दीनयोग। तो बनी रही मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरूआत करते हैं।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ, जहां आपको भक्ति और सुकून भरे गीत के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुने कालो दैनिक न्यूज अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां आपको मिलेंगे योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत।

7:40 पेश है शलबहर सूदी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

0: 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स 9:00 फिर से हिंदी न्यूज नौ बज के 5 मिनट रहेगा इंग्लिश न्यूज 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स मूवी रिव्यूज ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार
1: नमस्कार प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान किया है सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ मनु भाकर और पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार

0: Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले
2: 4 करोड़ रुपए के निवेश से 1000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है
3: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार की आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत।

दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कालो बोली में समाचार। मैं आपको मिलूंगी ठीक 5 मिनट बाद।

0: HIV ही गुम्बो सियो का अल्लू बदन हैं लजुका टेस्ट कोट का ओक HIV गन नमने अरिक माप जुका हिगी अरिक सा कामा
1: HIV का लग लगा हिगी हमने अल्लू बदन हैं नम लगा बे नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 नंबर हो कॉल रू तोला का
0: हक ना दिन्स ना आबा ही गुम गुमिन होइन लगा बे अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नहर लगन पेला लोक का जिलेंतु

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों आप सुन रहे थे गालो बोली में समाचार और अब वक्त हो चला है सुबह के अगले पड़ाव की तरफ पढ़ने का। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरजे याजू और साथ ही आकाशवाणी ईटानगर के इस खूबसूरत स्टूडियो से। दोस्तों, खिड़की से बाहर नजर डाल रही हूं तो हमारे ईटानगर की पहाड़ियों पर सुबह की धूप बिल्कुल सोनी से बिखर चुकी है। ऐसे मौसम में जब सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ सामने हो तो लगता है जैसे शहर ने अंगड़ाई लेकर एक नई उमंग ओढ़ ली हो। चलिए इस खुली हुई धूप का स्वागत करते हैं हमारे रेगुलर मॉर्निंग सेगमेंट में, यानी सुबह सवेरे। उम्मीद है आप सभी के हाथों में गर्म चाय का कप जरूर होगा, लेकिन आज की इस चमकती सुबह में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि ये जानेंगे कि आने वाले पूरे दिन को ताजा और बेहतर कैसे बनाया जाए। पहले थोड़ा सा सुकून लेते हैं एक मधुर धुन के साथ, फिर

दोस्तों चलिए अब आगे आते हैं हमारे पहले हिस्से पर योगा। अक्सर हम योगा को सिर्फ शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना या मुश्किल आसनों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच ये है कि योगा का पहला नियम शांति से शुरू होता है। अगर आप किसी बंद कमरे में हैं तो बस 2 मिनट के लिए बाहर आकर उस सुबह की धूप में खड़े हो जाइए। सबसे आसान और असरदार तरीका है प्राणायाम। जब आप गहरी सांस लेते हैं और आहिस्ता से छोड़ते हैं तो हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन का बहाव सीधे तौर पर बढ़ता है। आज सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालिए अनुलोम विलोम के लिए। किसी भी शांत जगह पर बैठिए, पीठ सीधी रखिए और अपनी सांसों की आहट को महसूस कीजिए। ये किसी टॉनिक से कम नहीं है, खासकर जब धूप की शीतलता और ताजगी आपके चेहरे पर पड़ रही हो। योगा आपके दिन भर के स्ट्रेस को

गाने के बाद और अब है शरीर को थोड़ा जगाने का, यानी फिजिकल एक्सरसाइज की। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब भारी भरकम वेट उठाना या घंटों दौड़ना होता है, पर सच पूछे तो हम पहाड़ी इलाके के लोगों के पास एक्सरसाइज के नए बहाने खोजने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप रोजाना 20 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज कदमों से चलते हैं तो आपका हार्ट रेट एक बेहतर रिदम में आ जाता है। सुबह की हल्की धूप में वॉक करने का फायदा ये होता है कि आपका शरीर बिना किसी दवाई के नेचुरल विटामिन डी अब्सॉर्ब करता है, जो हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने शोल्डर्स को रोटेट करें, कमर को स्ट्रेच करें और पैरों की उंगलियां को हिलाइए। जब आपकी बॉडी थोड़ी वार्म हो जाती है तो दिन भर काम करते वक्त वो थकान या आलस महसूस नहीं होता जो आमतौर पर हमें घेर लेता है। सिंपल रखिए, रोज सुबह 20 मिनट का पसीना दिन भर की सुस्ती भर पर भारी पड़ता है। आप थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, तब तक रेडियो पर बहने देते हैं ये धुन।

उम्मीद है शरीर में थोड़ी ऊर्जा और चेहरे पर हल्की मुस्कान तो जरूर आई होगी। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पहलू पर, यानी डेली हेल्थ टिप्स। आप चाहे कितना भी योगा कर ले या ध्यान लगा ले, अगर पेट की देखभाल ठीक नहीं है तो असर आधा ही रह जाता है। सबसे पहला नियम, सुबह उठते ही चाहे जितनी भी जल्दी हो कम से कम एक या दो गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत बनाएं। यह आपके डाइजेशन को ट्रैक पर लाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरी बात, हमारा नाश्ता। अपने ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत कीजिए। हमारे यहाँ ताजी हरी सब्जियां, दाल या सीजनल फल आसानी से मिलते हैं। प्रोसेसिंग वाले रेडी टू ईट खानों से बचिए और घर का बना गर्म पोषण से भरा भोजन कीजिए। और आखिर टिप, आज की इस तेज धूप में पानी पीना मत भूलिएगा। दिन भर अपने पास पानी की बोतल जरूर रखिए। छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़ी सेहत बनती है। तो बस आज के सुबह सवेरे में फिलहाल इतना ही। धूप का आनंद लीजिए, खुलकर सांस लीजिए और अपने दिन को शानदार बनाइए। आगे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर सुरो और जानकारी का सिलसिला यूं ही मुस्कुराता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। अब आप सुन पाएंगे कालो भाषा में समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सुन रहे थे आपातानी बोली में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे याजू। और अब शुरू होता है हमारा खास सिलसिला यानी मॉर्निंग एंटरटेनमेंट का। आप सभी को सुबह की ताजा हवाओं के साथ मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चाहे आप किचन में नाश्ता बना रहे हो, अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहे हो या दफ्तरों की तैयारी में लगे हो, हम आपके दिन को थोड़ी नई जानकारी और बेहतरीन धुनों से सजाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर सुबह अपने साथ एक नई ताजगी लाती है, लेकिन आज का दिन यानी 20 सितंबर इतिहास के पन्नों पर कितना खास रहा है, चलिए पहले उसे जानते हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया भर के अहम पन्नों से। 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन ने स्पेन से 270 जवानों के साथ समुद्री यात्रा शुरू की थी। ये वही ऐतिहासिक सफर था जिसने पहली बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। 1870 में इटालियन सेना ने रोम के पोर्ट पिया में दाखिल होकर इटली के एकीकरण को पूरा किया था। 1904 में विल्बुर राइट ने राइट फ्लायर 2 के जरिए हवा में पहली बार पूरा सर्कुलर फ्लाइट सक्सेसफुली पूरा किया था। वहीं 1973 में हॉस्टन में ऐतिहासिक टेनिस मैच बैटल ऑफ द सेक्सेस हुआ, जहां बिली जीन किंग ने बॉबी रिक्स को हराकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड में बराबरी का नया आलम कायम किया। दोस्तों सोचकर देखिए, जब मैगेलन समुन्द्र में निकले थे तो किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हर नई शुरुआत ऐसे ही होती है, थोड़ा सा डर लेकिन ढेर सारा विश्वास। अगर आप भी आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैगेलन की तरह पहला कदम बढ़ा ही दीजिए। तो चलिए इसी विश्वास के साथ सुनते हैं हमारा पहला

0: वेलकम बैक टू मॉर्निंग इंफरटेनमेंट आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। दुनिया के बाद अब रुख करते हैं अपने मुल्क अपने भारत के ऐतिहासिक पन्नों की तरफ। 1957 को आज ही के दिन के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना ने लंबा संघर्ष करके दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था, जो हमारी आजादी की पहली लड़ाई का एक बेहद गंभीर मोड़ था। 1878 में मद्रास से द हिंदू अखबार का पहला एडिशन एक वीकली के रूप में छापे गए थे, जिसकी पहली बार में सिर्फ 80 कॉपीज पब्लिश हुई थी। 1932 में महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था, जिसका मकसद समाज के वंचित वर्गों को बराबरी का अधिकार दिलाना था। 1942 में असम के गोपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की कोशिश ने 17 साल की वीर गंगना कनकलता बोरुआ ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। दोस्तों, कनकलता बोरुआ या गांधी जी के बारे में सोचते हैं तो ये एहसास होता है कि हमारा आज कितना त्याग और हिम्मत से बनाया गया है। हमारे नोटिस के इस पवन धरती ने हमेशा देश को बलिदान और स्वाभिमान सिखाया है। आज जब हम आजाद हुआ है, आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो इन वीरों के सपनों को आगे बढ़ाना हमारी भी जिम्मेदारी है। इस विचार के साथ हवा में घोलते हैं एक प्यारी सी धुन।
1: सब्सक्राइब नाउ एंड ऑफिशियल।

संगीत के सुकून के बाद अब वक्त है आज के ताजा सुर्खियों पर नजर डालने का। आज 20 सितंबर 2026 हमारे राज्य और आसपास के इलाकों में से कौन से अहम खबरें निकल कर आई है, आइए जानते हैं। FTII ईटानगर स्टूडेंट्स ऑन एकेडमिक हॉल्ट। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ईटानगर के छात्रों ने स्टूडेंट और एक फैकल्टी मेंबर पर हुए हमले के विरोध में एकेडमिक हॉल का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि जब तक कैंपस और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते तब तक नॉर्मल क्लासेस शुरू नहीं होंगे। दिवांग वैली में FMD का प्रकोप। दिवांग वैली जिले में फुट एंड माउथ डिजीज का आउटब्रेक लगातार गंभीर रूप ले रहा है। पशुपालन विभाग ने फार्मर्स और लोकल लाइफ स्टॉक ऑनर्स को सावधानी बरतने और तुरंत वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। तारासो इंटरस्टेट बॉर्डर इश्यू पर एनपीपी की मांग। नेशनल पीपल्स पार्टी की टीम ने तारासो में इंटरस्टेट बाउंड्री का ग्राउंड वेरिफिकेशन किया, साथ ही प्रशासन से मांग की है कि बॉर्डर इश्यू को सुलझाने के लिए हाई पावर कम्युनिटी की टाइम बाउंड बैठक तुरंत बुलाई जाए। अरुणाचल में 41% डेफिसिट रेनफॉल। इस साल राज्य में मौसम का अजीब असर देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में 41% कम बारिश दर्ज की गई है, जो आने वाले दिनों में पीने के पानी और खेती के लिए एक गंभीर वाटर क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है। डिप्टी सीएम में

स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन ने केंद्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बॉर्डर एरियाज के विकास के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की मांग उठाई है, ताकि हिली रीजन्स की जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा सके। दोस्तों, ये थी आज सुबह की बड़ी बातें जिनका असर हमारे दौर दौरान पर पड़ रहा है। एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक लेते हैं और फिर लौटते हैं अगले सेगमेंट के साथ।

0: तो दोस्तों ये थी आज की मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के संग, आगे और भी नई बातें और धुनों आपको इंतजार कर रही है। तो दोस्तों अब आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से।
1: Si All India Radio Station Itanagar seluga tagin program nga makogay layinin nga bintam gay na siyang aray. Prime Minister Narendra

नरेंद्र मोदी मुयु सटरडे आलोलो अतुबोग सोशल मीडिया हैंडल ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोक हजार रिंग अप्पीगुला अक्कनी युद्ध देंगा 28 रोजगार मेला ग आरालोक अपॉइंटमेंट लेटर गा पोता जीप को अला बिंपा लिंदुको रोजगार मेला सी निमनिलो दे देंगा सरकारी उगु गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लो पामोदुब सरकारी लोक सो सी रिदोंजीदुको अला बिंपा दुको जापान ग मिजू हो पार्क एथलीट स्टेडियम लो मयू सैटरडे लो 20th एशियन गेम ग ऑफिशियली ओपन जिपको अला जापान ग एम्परर बरिन नारुहितो निमी पिंपा लिंदुको सो प्रोग्राम ग जापान ग रॉयल फैमिली ऑफिशियल्स आदि ओक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ग प्रेसिडेंट बरिन शेख जोआम बिन हामिद लकोब एटेन जिपको अला बिंपा लिंदुको इंडिया लोक 501 members adi so Asian game lo participate duba Japan lo angchipuko ala bimpa duko Manu Bhakar double Olympic medalist la kabaddi player Pawan Sheravat India ga parade angnam ga lead jipako ala bimpa duko Rituri Keba women's cricket ga silu loka redung jire मुयु सैटरडे आलोलो अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन फाइनेंसिंग इंडिया जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के कॉन्फ्रेंस का अंकर जिला पार्टिसिपेट जिपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निमे बिम्पा कोनम का इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन लगाब अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर पोटेंशियल का अलब रिबोलो एनर्जी जनरेशन स्टेबल ओक डिपेंडेबल रिन्यूएबल पावर रिदुब सरकारी लोक उगुमनंग मगेमरप नासी मुदुंगजिदुको अला बिम्पालिंदुको हो कोचिंग अरुणाचल ग निदेदेंगा सरकारी उगु पादुब ओक एंटरप्रेन्योरशिप ना अलब रिमुदुब से रिदुंगजिदुको

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सुन रहे थे दागिन बोली में समाचार, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। मैं हूं आपकी अपनी साथी आरजे याजू, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है उस सुकून भरे दौड़ की तरफ जहां वक्त थोड़ा ठहर सा जाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास सिलसिले यानी सदाबहार में। पुराने गानों की सबसे प्यारी बात ये होती है कि वो सिर्फ संगीत नहीं होते बल्कि बीते हुए लम्हों की एक ऐसी खिड़की होते हैं जो जहां से पुरानी यादें ताजी हवा बनकर दाखिल होती है। कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी स्कूल कॉलेज के वो बेपरवाह दिन जब रेडियो पर गाना बजते ही लोग काम छोड़कर सुनने बैठ जाते थे। जिंदगी चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, कुछ धुने हमेशा नई और सरवार ही रहती है। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक ऐसी ही अमर आवाज और लाजवाब

संगीत की इस मिठास के साथ दिन की बेहतर प्लानिंग के लिए अब रुख करते हैं मौसम का हाल की तरफ। मौसम विभाग यानी IMD डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश की ताजा बुलेटिन के अनुसार आइए जानते हैं हमारे राज्य के विश्लेषण। पिछले 24 घंटों में पूर्वोत्तर के इस

हिस्से में मॉनसून की गतिविधि थोड़ी धीमी रही है। जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि मौसम में राज्य में आमतौर पर रेनफॉल डेफिसिट दर्ज हुआ है। समस्त अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आज लगभग अधिकतम जिलों में आकाश मुख्यतः आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, यानी पार्टली क्लाउडी कंडीशन बने रहेंगे। हिली डिस्ट्रिक्ट जैसे वेस्ट कामेंग, तवांग, लोअर सुबनसिरी और अपर सियांग के ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर या शाम के वक्त हल्की सी मध्यम बारिश या एक दो जगह गरज के साथ चिंता पड़ने की संभावना है। लेकिन फुट हिल्स और प्लेन बेल्ट से जुड़े इलाकों में आमतौर पर मौसम खुश्क और गर्म बना रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से आज किसी भी तरह की सीवियर वेदर वार्निंग या हेवी रेन अलर्ट जारी नहीं किया गया है, यानी कानून और सफर के लिहाज से हाईवे कंडीशन आमतौर पर ठीक रहने की उम्मीद है।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart play pro plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: अब आते हैं हमारी राजधानी ईटानगर और आसपास के इलाकों के डिटेल वेदर अपडेट पर। आईएमडी ईटानगर सेंटर के अनुसार कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर, नाहरलगन और न्यूजली में आज आकाश आमतौर पर आंशिक रूप से बदली वाला रहेगा। पिछले 24 घंटों में यहां बारिश बिल्कुल शून्य यानी नील रिकॉर्ड की गई है। तापमान की बात करें तो ईटानगर में आज का अधिकतम तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक है। वहीं कल रात का न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और आज भी रात का तापमान लगभग 24 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। हवा में नमी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सुबह के समय 80% दर्ज की गई है, जो शाम तक लगभग 70% के दायरे में आने की संभावना है। इसका सीधा मतलब यह है कि दोपहर के वक्त धूप और ह्यूमिडिटी के चलते थोड़ी सी गर्मी और चिपचिपाहट महसूस हो सकती है। सूर्यास्त का समय आज शाम 5:16 पर होगा। अगर आप दोपहर में बाहर निकल रहे हैं तो छाता या धूप से बचने का इंतजाम जरूर साथ रखें और पानी पीते रहें। मौसम के इस तेवर को ठंडा करने के लिए आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

दादी वो यहीं पर ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: दोस्तों, मौसम चाहे धूप का हो या बादलों की आवाजाही का, जब मन में संगीत घोल दिया जाए तो दिन का हर सफर आसान लगने लगता है। उम्मीद है मौसम की ये जानकारी आपके दिन की योजनाओं में जरूर मदद करेगी। आज के इस सदाबहार सफर में फिलहाल वक्त मुझसे विदा लेने का इशारा कर रहा है, लेकिन आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम का ये रेडियो ट्रांसमिटर आपके साथ यूं ही गीत संगीत और खबरों का ताना बाना बनता रहेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, पुरानी यादों को साझा कर मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा।

0: बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4,000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा जो लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
6: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को डीओबी में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग एआरओ के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
7: We have to continuously be watchful of the
8: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
1: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
9: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डेगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सेंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकू ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
10: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने कॉप 21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है।

0: कलकत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डुसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डुसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukti Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
3: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
2: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1067 locations in the country. It added that this

0: दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलोंग से समाचार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। मैं हूं आपके अपने आरजे याजू। तो घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी है और अब वक्त है हमारे खास एजुकेशनल सेगमेंट का, यानी हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

आप सभी सुनने वालों को मेरा बेहद प्यार भरा नमस्कार, खासकर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो यंग दोस्तों इस वक्त रेडियो पर जुड़े हैं, चाहे आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी नेरिस या किसी भी कैंपस के हॉस्टल में हो या घर पर असाइनमेंट और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आज का ये प्रोग्राम खास आपके नाम है। हम अक्सर शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मोटी मोटी किताबें, लाइब्रेरी का शांत माहौल और लैपटॉप की स्क्रीन्स आती है, लेकिन क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ चार दीवारी के अंदर बैठकर मार्क्स लेना ही है? असल में एक बेहतरीन दिमाग तभी ठीक से काम करता है जब उसके पीछे एक तंदुरुस्त शरीर और खेल खुद का जज्बा हो। आज 20 सितंबर है और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट। आइए इस दिन की गहराई और स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स के महत्व को समझने से पहले हवाओं में घोलते हैं एक प्यारा सा धुन।

और एकेडमिक महत्व को। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को साल 2015 में यूनेस्को ने ऑफिशियली ऐलान किया था और 2026 से ये दिन हर साल 20 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसे आयोजित करता है FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर 20 सितंबर ही क्यों चुना गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली बात, दुनिया भर के अधिकतम देशों में एकेडमिक सेशन की शुरुआत इसी महीने होती है और दूसरी ऐतिहासिक वजह यह है कि 20 सितंबर 1924 को पेरिस में पहला वर्ल्ड स्टूडेंट चैंपियनशिप आयोजित हुआ था। यूनेस्को और FISU का मकसद सिर्फ एलीट एथलीट्स बनाना नहीं है, उनका मान

0: sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: वेलकम बैक टू हेलो ईटानगर। अब आते हैं एक ऐसी बात पर जो सीधे आपके और मेरे दिल से जुड़ी है, स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रेस और फिजिकल वेलबींग। मैं जब भी अपने कैंपस के दिनों को याद करती हूँ तो देखती हूँ कि जब सेमेस्टर एंड करीब आते थे तो हर स्टूडेंट पर प्रेशर होता था, ग्रेड्स का, प्लेसमेंट का और फ्यूचर का। इस दौर बाग में हम सबसे पहले जिस चीज को छोड़ते हैं वो है हमारे फिजिकल रूटीन। हम देर रात तक जागते हैं, खाने का कोई फिक्स वक्त नहीं होता और ग्राउंड पर जाना तो बन ही हो जाता है। लेकिन साइंस और साइकोलॉजी दोनों ये मानते हैं कि अगर आप दिन भर में सिर्फ 30 मिनट भी बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल या सिर्फ ग्राउंड का 4 चक्कर दौड़ने में लगाते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये एंडोर्फिन्स आपके एंजाइटी लेवल को कम करते हैं और फोकस को दुगना बढ़ा देते हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के पास तो नेचुरल स्टेमिना और स्पोर्ट्स के लिए जबरदस्त टैलेंट है। हमारी पहाड़ियों और खुले मैदानों में वो ताकत है जो बड़े शहरों के जिम में भी नहीं है। इसलिए स्पोर्ट्स को पढ़ाई के रास्ते का कांटा मत समझिए, ये आपके कंसंट्रेशन और करियर का सबसे बड़ा साथी है। अगर शरीर में जान नहीं होगी तो डिग्री का बोझ संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

0: इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट के इस मौके पर आज हम सभी एक वादा करें, चाहे असाइनमेंट जितना भी लंबा हो, चाहे शेड्यूल जितना भी बिजी हो, हर दिन अपने शरीर और मन के लिए स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज का वक्त जरूर निकालेंगे। अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ सिर्फ कैंटीन में बैठने की जगह शाम को थोड़ी देर वॉलीबॉल कोर्ट या फुटबॉल ग्राउंड पर गुजारिए। वहाँ बिताए लम्हे और खेले गए हर गेम आपको आने वाली जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करेगा। हेलो ईटानगर के आज के इस एजुकेशनल सफर में फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM सुनते रहिए, ज्ञान और संगीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.3।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के माध्यम से अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे, किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रति

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से और मैं हूँ आपकी अपनी आरजी याजू। दोस्तों अगर आपके हाथ में इस वक्त गर्म चाय का प्याला है और आप सोच रहे हैं कि फिल्मों की दुनिया में पिछले दो

एंटरटेनमेंट कॉर्नर फिल्मी गपशप। हर वीकेंड सिनेमा प्रेमियों के लिए कुछ नया लेकर आता है, किसी का घर खुशियों से रोशन होता है, किसी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ती है तो कोई फिल्म चुपके से ओटीटी पर स्ट्रीम होकर चर्चा का विषय बन जाती है। आज हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस के शोर से लेकर ताजा कॉन्ट्रोवर्सी और अपकमिंग ओटीटी रिलीजेस तक सब कुछ लाइव और रियल टाइम। पर पहले माहौल को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं इस ब्लॉकबस्टर ट्रैक के साथ।

दोस्तों अब आते हैं कल शाम की सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली सेलिब्रिटी न्यूज पर। बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर एक बार फिर नन्ही खिलकारियां गूंज रहे हैं। कल यानी 19 सितंबर को दीपिका और रणवीर ने अपनी दूसरी बेटी का स्वागत किया है। दुआ के बाद अब उनके परिवार में एक और नन्ही परी आई है और उनका ज्वाइंट सोशल मीडिया नोट आते ही पूरी इंडस्ट्री अनिल कपूर से लेकर कृति सनन तक बधाइयां से भर चुकी है। दोनों के फैंस के लिए ये वीकेंड वाकई बेहद स्पेशल बन गया है। खुशियों के सिलसिले के साथ चलिए सुनते हैं ये अगला रोमांटिक गीत।

रोमांस के बाद अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर चल रहे दो अलग अलग दौर की। इस फ्राइडे थिएटर्स में आई करीना कपूर की मिस्ट्री ड्रामा दायरा। फिल्म को लेकर क्रिटिक्स ने करीना की परफॉर्मेंस को काफी सराहा है। उनकी इंटेंस एक्टिंग और रो इमोशन स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करें तो ओपनिंग थोड़ी धीमी रही है। शुरुआती दिनों में कलेक्शन लगभग 1 करोड़ के आसपास रहा और अब सारी उम्मीद वीकेंड के वर्ड ऑफ माउथ पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ थिएट्रिकल स्पेस में मिर्जापुर द मूवी अपना तीसरा हफ्ता पूरा कर रही है और लगभग 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मार्क को टच कर चुकी है। फ्रेंचाइज का क्रेज सिनेमा हॉल्स में अभी भी बरकरार है।

0: सीरीज के इस उतार चढ़ाव के बीच हवाओं में घोलते हैं ये दूसरा गाना।
1: शादी कर सकते हैं।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम बैक टू फिल्मी कपशप आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर. सिनेमा सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे लिविंग रूम्स और मोबाइल स्क्रीन्स पर भी हर फ्राइडे एक नया दुनिया आती है. परसों यानी फ्राइडे 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप हुई लव स्टोरीज 3 विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, विशाल भारद्वाज और शकुन बात्रा जैसे 4 अलग अलग फिल्म मेकर्स की ये एंथोलॉजी मॉडर्न रिलेशनशिप और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करती है. राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा और विजय वर्मा की स्क्रीन प्रेजेंस पर सोशल मीडिया पर खूब डिस्कशन चल रहे हैं. मिक्स रिव्यूज जरूर है लेकिन वीकेंड बेंच वॉच के लिए लोग इसे खूब देख रहे हैं. इसे इसी मेलो मूड को कंटिन्यू

फिल्मों की चमक दमक के बीच कुछ ऐसे बातें भी सामने आती है जो सवाल खड़े करती है। अभी हाल ही में एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर्स को लेकर आने वाले अजीब और एब्सर्ड डिमांड्स पर खुलकर बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे एक फिल्म मेकर ने उनसे किसी एक्शन सीक्वेंस को इनरवेयर में शूट करने की डिमांड की थी, जिसे उन्होंने बिना झिझक रिजेक्ट कर दिया। उनका ये बयान इंटरनेट पर चर्चा में है, जहां लोग इंडस्ट्री की वर्किंग कल्चर और प्रोफेशनल एथिक्स पर डिबेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट केस में एफडीए अथॉरिटीज की तरफ से लीडिंग स्टार्स पर रेगुलेटरी वायलेशन को लेकर नए रिमार्क्स आने के बाद एक बार फिर सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मुद्दा गर्म हो गया है। इन गंभीर चर्चाओं के बीच थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एक बेहतरीन धुन के साथ।

0: मिशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म एक अपशब्द। अगर आप पूछेंगे कि आने वाले वीकेंड में क्या कुछ लाइनअप है तो डायरी में डेट नोट कर लीजिएगा। आने वाले फ्राइडे 25 सितंबर को थिएटर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फैंटेसी ट्रेलर द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट रिलीज के लिए रेडी है। पंचायत फेम दीपक कुमार मिश्रा इसके डायरेक्टर है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 24 सितंबर को आ रही है परिणीति चोपड़ा और जेनिफर विंगेट की मिस्ट्री ड्रामा सीरीज शक ट्रस्ट नो वन। एक बच्ची के गायब होने और सालों बाद मिस्ट्री डीपन होने के प्लॉट ट्रेलर से ही काफी एंगेजिंग लग रहा है। तो चलिए सस्पेंस को साइड में रखते हैं और सुनते हैं एक फ्रेश प्यारा सा गीत।

गॉसिप और सोशल मीडिया ट्रेंड्स की तरफ रुख करें तो ट्रोलर्स और स्टार्स का आमना सामना लगातार बना हुआ है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने हाल ही में उनके एक्सेंट और लैंग्वेज को लेकर ट्रोल करने वालों को एक शांत और सुलझा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग भाषाओं में काम करने वाला कलाकार सीखने के प्रोसेस में होता है और वो हर भाषा की इज्जत करती है। वहीं वेटरन एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने इंटरनेट पर फीमेल एक्ट्रेसेस की एजिंग और पोस्टमार्टम वेट का टारगेट करने वालों को आधा हाथ दिया है। उनका कहना था कि जब मेल एक्ट्रेस पर कोई सवाल नहीं उठाता तो एक्ट्रेसेस से हमेशा एज लेस दिखने की उम्मीद क्यों रखी जाए। वैसे काफी मैच्योर स्टेन रहा है उनका। ऐसे पॉजिटिव थॉट के साथ आइए सुनते हैं हमारे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। हमने बॉक्स ऑफिस की ताजा रिपोर्ट देखी, ओटीटी के नए रिलीजेस की बात की और उन मुद्दों को समझा जो इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिल्मों की खासियत यही है, वो चाहे पर्दे पर चलती हो या पर्दे के पीछे, उनकी कहानियां हमेशा हमारे रोजाना के जीवन को किसी न किसी तरह छू ही लेती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई थी और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थी। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टैगबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की उइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा।

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे ट्रांसमिशन का, आखिरी कार्यक्रम का। जी हाँ, शुरू हो चुका है रेडियो ऑन डिमांड। आपका मैसेजेस हमें मिल चुका है और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से चुनिंदा नगमों को आपके आंगन तक लाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सुरीली महफिल। पहली फरमाइश आई है चाईबासा झारखंड से, जिसे भेजा है शिवा गोप जी और उनके पूरे परिवार ने। उनकी पसंद का ये गीत है साल 1995 की फिल्म जख्मी सिपाही से। तो आइए सुनते हैं।

अगला मैसेज हमारे पास आया है असम से। सुनीता बसुमतारी जी ने दोस्ती और अपनेपन से भरे एक बेहद खूबसूरत नगमे की रिक्वेस्ट की है। फिल्म है गोविंदा और राजेश खन्ना स्टेरर स्वर्ग। सुनीता जी, आपकी फरमाइश पर पेश है ये यादगार गीत।

0: Performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्ती के एहसास को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं गोलाघाट असम की तरफ, जहां से रोमेश, रुनु और लकी ने मिलकर एक बेहद ताज़ा और एनर्जाइजिंग ट्रैक चुना है, फिल्म ICU। उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है अपने खास दोस्तों बाइकोन, अमोल, विमोल, देवशीष, हितेंद्र, जोगेंद्र, सोनाली, अंजलि और सुनीता के नाम। आप सभी दोस्तों के नाम सुनिए ये गाना।

दोस्तों गोलाघाट से ही आगे बढ़े तो बोकाघाट असम से हर्षित गोस्वामी जी की पसंद हमारे पास आई है। उन्होंने एक अभी पार्टी ट्रैक की डिमांड की है, पार्टी ऑन माय माइंड। हर्षित आपकी पसंद हाजिर है रेडियो पर।

दोस्तों बोकाकात आसाम से ही अगला संदेश भेजा है और की गोस्वामी जी ने। देशभक्ति और मिट्टी के महक से भरा ये गीत हर दिल को छू जाता है। फिल्म केसरी से भी पराग की आवाज में ये खूबसूरत

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, बोकागत के ही एक श्रोतागण ऋषित गोस्वामी जी ने हमसे गुजारिश की है फिल्म छिछोरे के बेहद मशहूर गीत की। अरिजीत सिंह की आवाज में ये नगमा दिलों के दरमिया की फरियाद को लफ्जों में बयान करता है। ऋषित जी, आपकी फरमाइश पर पेश है ये गाना।

दोस्तों जुनाई मेसा की देमा जी आसाम से बिमल बसमतारी जी ने हमें मैसेज किया है। बिमल जी ने 90s का एक एवरग्रीन रोमांटिक टाइटल ट्रैक चुना है और इसे डेडिकेट किया है अपने सभी दोस्तों के नाम। देमा जी के, विमल जी और उनके सभी दोस्तों के लिए।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिप में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए

सरिहाजिन कर्बी अलोंग असम से जोगेंद्र सोनाली और दोरम किरी जी ने हमसे फिल्म जंगबाज का एक जिंदा दिल गीत बजाने की गुजारिश की है। आप तीनों की फरमाइश पर पेश है ये ट्रैक।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों सभी हाजिन के दोस्तों के बाद अब रुक करते हैं एक ऐसी जगह जहां से संदेश आना हमारे लिए हमेशा बेहद खास होता है। एमकेजी नागलैंड से बहादुर जी ने हमें याद किया है। बहादुर जी नागलैंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बैठकर आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम को इतना नियमित रूप से सुनना और अपना स्नेह भेजना सच में दिल को छू लेता है। आपका ये जुड़ाव हमारे पूरे रेडियो परिवार के लिए बेहद अनमोल है। बहादुर जी ने गुजारिश की है साल 2001 की फिल्म ये जिंदगी का सफर के एक एनर्जेटिक गीत की। बहादुर जी और मोकुक चंग के सारे सभी श्रोताओं के सम्मान में पेश है उदित नारायण की आवाज में ये नगमा।

दोस्तों फरमाइश तो हमारे पास अभी और भी आई हुई है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज के इस दौर में हम और गीत शामिल नहीं कर पाएंगे। जिनकी फरमाइश आज रह गई है, कृपया कल अपना रिक्वेस्ट दोबारा जरूर भेजिएगा।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो निमान। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता दीनू। दोस्तों, कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा। अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नानस के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे अजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाण जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर हो रहा है। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्ष से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी थीं और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने पहला पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी 1998 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills.

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप बने हुए हैं हमारे साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। जी हां दोस्तों, इससे पहले आप सुन रहे थे हमारी चहेते आरजे याजू नादा को, जो बनी हुई थी आपके साथ हमारी पहली प्रसारण सभा में। और अब दोस्तों इस सभा में आपका हम सफर रहेगा, आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि यही होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों इस सभा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तामजांग तथा तकनीकी अभियंता एचएम ब्यूसन। तो गाइस देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा ये दूसरा प्रसारण सभा, हमारी पहला कार्यक्रम फिल्म लहर के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, और लीजिए पे से ये बेहतरीन गाना आप सबके लिए कार्यक्रम फिल्म लहर में।

0: सुनो दोस्तों, सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्में लहर आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं वो वेस्टर्न मेलोडीज।
1: हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर। आई एम सैम योर होस्ट फॉर द डे। टुडेज प्लेलिस्ट इज ऑल अबाउट द डार्कर साइड ऑफ रॉक, बिग गिटार्स, लाउड

0: That is all for today, listeners. I hope you enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: और इसी के साथ श्रोता दोस्तों समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात. और दोस्तों अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमारा गीतों का संगीतों का सिलसिला जारी रहेगा. तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह की नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक BMW कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया

0: जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगी और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking its connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Minister of Petroleum and Natural Gas has said the process is not meant to deny LPG to any genuine household and every eligible consumer has several easy ways to complete it. In Mumbai, 2 people were killed and 4 others injured after an electric shock at a temporary drinking water stall near Ganesh Utsav Mandal in Kala Chowki early this morning. The injured were taken to a nearby hospitals. Of the injured is reported to be a critical condition, while 3 others are reported to be stable. In another incident in the state, 3 people were killed and 1 injured after a BMW car met with an accident on Mumbai's coastal road early this morning. The injured person has been admitted to hospital. Further investigation is underway. Senior journalist Payal Mehta passed away in Mumbai this morning. She was 46. Ms. Mehta, who was visiting the city, experienced certain uneasiness and was rushed to a hospital where she breathed her last. Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Rajnath Singh and Ashwini Vaishnav have expressed condolence on her demise.

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत माला।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत माला में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम डेडिकेट करते हैं, इस कार्यक्रम में बजे सारे गाने हम डेडिकेट करते हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गाना एआर रहमान की आवाज में, वंदे मातरम, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गीतमाला। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। और अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
3: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से

0: हेरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of next month. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Vice President C.P. Radhakrishnan will inaugurate the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi the day after tomorrow. The 5-day event has been organized on the theme Climate Resilient Water Management. Iran has communicated its conditions to international mediators for restarting negotiations.

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए दोस्तों, सुनते हैं कुछ हिंदी क्लासिक म्यूजिक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, लाखों है यहाँ दिल वाले, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

ये जो दोस्तों पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आज और कल का ये बेहतरीन गीत ये वादिया ये फिजाएं ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलिए छोटो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे इस संगीत में सफर में एक बार फिर से, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just

0: 7.49 lakh.
1: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: नमस्कार श्रोता दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म कभी कभी का ये आइकॉनिक ट्रैक, जिसे

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब

हाँ जी दोस्तों, लीजिए पैसे ये बेहतरीन गाना श्रेया घोषाल की आवाज में फ्रॉम द फिल्म आई हेट लव स्टोरी ऑन योर अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, मैं लोड कराता हूँ, सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, और उसके बाद हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: Sherawat was the star of the match as she scored 8 goals. Ishika Chaudhary scored 3 while Lal Than Luangi and Neha each bagged 2. India will next take on Indonesia tomorrow. In swimming, Indian swimmer Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100-meter breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds at the Asian Games. China's Shi Jiayu topped the heats while Japan's Hidekalu Takehara finished 2nd. Union Sports Minister Mansukh Mandavia today joined members of the Indian diaspora in Japan for a special Sundays on Cycle event organized to cheer for the Indian contingent. In a statement, Mr. Mandavia praised the Indian diaspora in Japan for supporting the country's athletes. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana, Vidarbha are expected to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh will organize at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian Games with 2 silver medals in Nagoya, Japan. India storms into the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nissin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. An IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है एक रिपोर्ट
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों वैज्ञानिक जानकारी पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई इनमें नीतियां बनाने उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे 14 राज्य इसमें भाग लेंगे जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन

0: तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका की सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपा गोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
4: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य, यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं, उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
3: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ क्लैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
3: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडब्रू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
4: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष शिवा।
0: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश

0: देश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो सो दोस्तों आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

कुछ यादें पुरानी, कुछ बातें सुहानी, ले आती है जहां, ले आते हैं हमें वही, जहां है बचपन की वही कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त आज जे ननास। और आप आज दोस्तों, आज हम फिर से वापस आ गए हैं आपके संडे को सुपर डुपर स्पेशल बनाने। दोस्तों याद है वो दिन जब कैसेट्स की रिबन फंस जाती थी और हमें उसे पेंसिल से ठीक करते थे, वो वॉकमैन का क्रेज और वो एवरग्रीन मेलोडियस बीट्स। तो बस अपने एयरफोन्स लगाओ, वॉल्यूम को फुल करो, क्योंकि आगे आने वाला है 90s का एक ऐसा क्लासिक ट्रैक जो आपके चेहरे पर ले आएगा एक प्यारी सी मुस्कान। बने रहिए हमारे साथ, यानी मेरे साथ आरजे ननास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, ओनली ऑन योर फेवरेट स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये सो हिट्स ऑफ 90s एक बेहतरीन गीत के साथ। लीजिए फिर से ये सॉन्ग आप सबके लिए, सुनते रहिए। मैं लौट कर आता हूँ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: सो तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद मिस मी कमान श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद थालकांती श्रोताओं का समाचार। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
1: Good afternoon. This is Shubhashachi Bhattacharya. Today's headlines are President Draupadi Murmu to address the valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics this evening in New Delhi. The two-day conference provides a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices and institutional experiences across jurisdictions. Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh expressed grief over the demise of journalist Payal Mehta. Senior journalist Payal Mehta passed away in Mumbai early this morning. She was 46.

감성 노모흡 미킨자저육 링리뉴돈 우공감권왕 모흥앙 파반수이니은 감

百百百妙观，观我心之乱。本地丹黄，我这天气发难在。轮怕破关都能门灭亡，这万梦惑动那些云龙。

Sati kam go kiu to thang ma ee kap hon ee. Oh, no, no.

ผิดวันเรื่องคุณสังทุดังกันยินพาราหดหืนขาโตสู้

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुधर दोस्तों आप सुन रहे थे ताइकांती श्रोता होकर समाचार आकाश वाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब बढ़ते हैं आगे और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स।

नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली लिसनर्स। मैं हूं आपका दोस्त आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो बॉलीवुड अपडेट सिर्फ और सिर्फ हमारे रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हां दोस्तों, कहीं मत जाएगा क्योंकि अगले कुछ पलों में हम खोलने वाले हैं तिंजल टाउन के सबसे स्पाइसी पन्नों को। हेडफोन्स पहन लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और सुनो कि आज क्या कुछ चल रहा है हमारे फेवरेट स्टार्स की दुनिया में। तो बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और आइए शुरू करते हैं ये शो।

तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सबसे प्यारी और बड़ी खबर से। तिंजल टाउन के पावर हाउस कपल दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह के घर एक बार फिर से गूंजी है नन्ही खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 19 सितंबर 2026 को दीपिका और रणबीर ने अपनी दूसरी बेटी का दुनिया में स्वागत किया है। और सबसे प्यारी बात पता है क्या है, जैसे उनकी बड़ी बेटी दुआ का जन्म सितंबर 2024 में हुआ था, वैसे ही ये छोटी प्रिंसेस भी सितंबर में ही आई है।

दोस्तों अब आते हैं बॉक्स ऑफिस की दुनिया पर, क्योंकि अगर आपने सोचा था कि ओटीटी के बाद क्रेज कम होगा तो भाई आप गलत थे। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की, जो थिएटर्स में धमाल मचा रही है। पंकज त्रिपाठी मतलब अपने कालीन भैया, अली फजल यानी गुंडू पंडित और दिव्येंदु के मुन्ना भैया, ये तीनों बड़े पर्दे पर ऐसी आग लगा रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स हिल रहे हैं। फिल्म ने रिलीज के दो हफ्ते बाद ही इंडिया नेट कलेक्शन में 200 करोड़ का आंकड़ा लगभग पार कर लिया है और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 296 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अगर आपने अभी तक थिएटर्स में विश लिस्ट नहीं मारी है तो भाई जल्दी जाओ, क्योंकि मिर्जापुर का बड़ा पर्दा मजा ही अलग है।

और दोस्तों अगर बात करें इस हफ्ते की रिलीज की तो बॉक्स ऑफिस पर काफी वैरायटी देखने को मिल रही है. पिछले हफ्ते अक्षय कुमार और सैफ अली खान की एक्शन थ्रिलर हैवान ने थिएटर्स में आपका ध्यान खींचा. वही इस फ्राइडे यानी 18 सितंबर को कुणाल केमू की डायरेक्शन वाली एक्शन थ्रिलर वाइब जिसमें प्रीति जिंटा भी नजर आ रही है और लव लोटरी भी सिनेमा में उतर चुकी है. मतलब ये है कि सितंबर का महीना पूरी तरह से एंटरटेनमेंट पैक्ड है. तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास और मसालेदार खबर आप सबके लिए हमारे इस शो बॉलीवुड अपडेट्स में. और जैसा कि हम इस शो के आखिर में सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाना, तो बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. लीजिए पैसे राहत फतेह अली खान की आवाज में फ्रॉम द फिल्म कलयुग.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुनो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे इदु मिसमी श्रोताओं का समाचार।

0: वंचित श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए पेश है ईद उमिस में कार्यक्रम।
1: चेलापुची जेनहु इन्यामले निमाचिनी ईद उमिस में आहो लाकजे तिबार प्रालम सेमीकॉन इंडिया 2026 फिफ्थ एडिशन इंडिया फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर है लिबाचा बुनी माचिनी यश भूमि न्यू दिल्ली मने अखाई बच का 3 डेज कॉन्फ्रेंस है थीम्स सिलिकॉन टू सिस्टम लाने बिल्डिंग द इकोसिस्टम चिपुमा माओ ताहो इमुमे प्रागे गया बच का आई माहो माओ कसमे प्रागे है इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स माहो मंगाओ कानी कंट्रीज दोने माओलो मंगाओ स्पीकर सालंबो में पार्टिसिपेट एग बच का ताहो कंट्री पेबिलन रिप्रेजेंट यह गांतिका है जापान साउथ कोरिया मलेशिया नेदरलैंड सिंगापुर दोने स्वीडन आतिका द्वा होलोनी स्टेट्स पेविलियन माची में सेमी कंडक्टर चिपुमा लाखित आगे बचिका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में सेमिकॉन इंडिया है इनोग्रेट ए बचिका डीसीएम टूर्नामेंट में ला में विकसित भारत वेगे बने सस्टेनेबल ने रिलायबल एनर्जी चिपुमा है प्राण अतुति हुए होने प्रावे अरुदा लगाचिका आई माहो अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर पोटेंशियल खागाचा है अब आतिका गिबाने तंदो प्राउबुदा लगा चिखा सेकेंड डे कॉन्फ्रेंस है फाइनेंसिंग इंडियाज जर्नी टूअर्स विकसित भारत चिपु फाइनेंसिंग एनर्जी ट्रांजिशन गेबमा लिबाचा बुनी माचिनी कॉन्फ्रेंस है भारत मंडपम न्यू दिल्ली माने डीसीएम टूर्नामेंट में गिबाने अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर सेक्टर चिपुमा लाखतो गेबा चिखा मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर्स लैंड मैनेजमेंट एंड सिविल एविएशन बालो राजा में अनिनी विंटर फेस 5.0 है अनिनी दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट माने लिबाचा बुनी माचिनी अखा महो आलोपोहा के बचिखा मिनिस्टर में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आलमरोगो फेस्टिवल चिपोमा तांदो नौ अगे बचिखा आई महो एमएलआर कम एडवाइजर टू द मिनिस्टर टूरिज्म सिविल एविएशन जियोलॉजी एंड माइनिंग मोपी म्यूहुमे दिबांग बिली माची मैं आलम लोगों तंदो नौरोगा चिखा ऐसा इनग्रेल प्रोग्राम मा जीपीसी साधु मिहु डीसी यशवंत मीना एसपी जेम्स के लेगो जेटपीएम एचओडी ऑफिसर्स दोने आतिकाची पब्लिक आलम बु गेल चिखा अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्काउट एंड गाइड फेलोशिप है डीएस महाजन एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26 व प्रांतो इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अवार्ड हागाही बचिखा एचा अवार्ड है असुर ताहो जनरल असेंबली इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप है कनूर केरला माने अखा महो हागाही बचिखा आया हागाही बा अवार्ड है अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्काउट एंड फेलोशिप गेबाने तांदो प्रांत बुदा लगा चिखा गवर्नमेंट ला में आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है डोमेस्टिक एलपीजी रिफिल गेबाने माचेला पोची जी के तारगे लिबा एवे अरु दादा लगा चिखा गैस सिलेंडर अखा इमो नंबर है दुकुम ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एजी ना लगा चिखा काजा इमो नंबर में बायोमेट्रिक अदर ऑथेंटिकेशन ए गुम्बुया एचा एला पुची जी के तारगे लिबा एजी ना लगा चिखा इंडिया माची एलाविनिल वालारीवन में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट है आईची नागोया एशियन गेम है एतानी जापान माने अखा महो सिल्वर मेडल आने ही बचिखा आई महो वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम है आईची नागोया एशियन गेम मा एलाविनिल वालारीवन सोनम मास्कर दोने मदरसा विनोद में इंडिया टीका गेबाने एहें तांदो मेडल आने ही बचिखा यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंदाविया में मेडल आने गा मैं आलम गौतान दो।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ईदू मिसमी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अब आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स।

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे वॉडकास्ट ऑफ वेलोडिक्टरी सेशन ऑफ टुडे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स 2026 इन ग्रेसियस प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों इसी के साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:07, यानी अब वक्त हो चला है मेरे अलविदा कहने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबके चहेते आरजे आरजे अपर्णा, जो बनी रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता एचएम ब्यूसन। तो अब मुझे यानी आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे नरास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल सभागार से आपको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए उपस्थित हैं। आज समापन समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं।
2: वेलकम टू द आइकॉनिक प्लीनरी हॉल ऑफ द विज्ञान भवन हियर एट दिल्ली फॉर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स 2-डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनामिक्स। गिविंग द वेलकम स्पीच इज द ऑनरेबल श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
3: एंड फ्यूचर जनरेशंस। द सेकेंड सेशन टर्न आवर अटेंशन टू द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड गवर्नेंस। In this session, we reflected on sustainable and livable cities, human rights, clean energy, and green infrastructure. The message was clear. Environmental law must remain responsive and forward-looking, while embracing technology, innovation, and sustainable finance, and ensuring just transition. The third session widened the lens to the planetary scale of environmental challenges, climate change, biodiversity loss, land degradation, pollution, water scarcity, and ecosystem decline are not the separate problems. They are interconnected and they do not respect political boundaries. Regional cooperation, transboundary mechanism, and international collaboration are therefore essential. Finally, the fourth session brought us to the most important question: what do we do next? The discussions on modernizing forest governance, strengthening community participation, and creating clear roadmaps reminded us that the broad commitments must ultimately become clearer priorities, measurable goals, and sustainable implementation. This brings us to the clear message of the conference. The future of environmental protection will depend not merely on identifying challenges, but on our ability to build laws, institutions, and partnerships capable of responding to them. As we conclude, I express my heartfelt gratitude to all the distinguished dignitaries, honorable judges, international delegates, scholars, experts, senior advocates, members of the National Green Tribunal Bar Association, government representatives, civil society, media, and most importantly, our young students and researchers. I am particularly grateful to our international participants from across the world. Your presence has reinforced the understanding that environmental justice is a shared global endeavor. My sincere thanks also to UNEP and EDB for their technical support,

0: to the Honorable Supreme Court of India, High Court of Delhi, MOEF NCC, Government of India, our technical team, registry, and every person who worked behind the scenes to make this conference possible. As we reflect on the way forward, I am reminded of the word of David Attenborough. What we do now and in the next few years will profoundly impact the next few thousand years. Conference such as this remind us that in the end, the law of environment is the law of our shared survival. Let us therefore leave this gathering with a renewed resolve to work for an environmental future that is cleaner, fairer, and more resilient. Let our laws, our institutions, our conduct reflect not only knowledge, but conscience. Thank you once again for your gracious presence and participation. Thank you and Jai Hind.
1: स्वागत संबोधन मेजबान राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, आपने स्वागत संबोधन दिया और मंच पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मौजूद हैं माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती बी वी नागरत्ना जी और भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी.
2: Bharat has once again shown the world what it means to move towards a sustainable and a developed world while keeping our roots intact, while keeping the environment as our priority and making sure that we leave a better world for the future. Having fulfilled her promise made at the Paris Climate Summit way before the set timeline, India has become one of the select few nations to show the world a model of nation building where environment protection and ecological balance is at the core of policy making and executive actions.
1: इस दो दिन के सम्मेलन में विश्व भर के 70 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और एशियाई विकास बैंक एडीबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया. इस पूरे आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा किया गया है. इस पूरे आयोजन को जो भारत का एक विशिष्ट वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी.
2: And now, Chairperson, Honorable Justice, Shri Prakash Srivastava ji will felicitate the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.
3: प्रगति की जड़ें प्रकृति में गहरी होंगी. We also would like to welcome our Honorable Minister, sir, welcoming Shri Manohar Lal ji, Maninee Kendriya Awasan Evam Shahri Karya Mantri Tatha Urja Mantri, Shahri Vikas, Adharbhut Sanrachna aur Urja, in tino ke sangam par unka netritva Bharat ki satat evam samaveshi vikas yatra ka ek mahatvapurn आधार है.
1: और स्वागत हो रहा है माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी का.
3: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हुज प्रेजेंस लेडीज एंड जेंटलमैन ब्रिंग्स द विजडम ऑफ आवर हाईएस्ट जुडिशियरी टू द इवॉल्विंग डिस्कोर्स ऑफ एनवायरनमेंट.
2: ऑनरेबल श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, चेयरपर्सन एनजीटी, नाउ वेलकमिंग Honorable Srimati Justice B.V. Nagaratna, Judge, Supreme Court of India. And now, the Honorable Sri Justice Prakash Srivastavji will felicitate the Honorable Learned Solicitor General of India, Sri Tushar Mehtaji.
3: Jurisprudence to this important dialogue. Thank you, Honorable Chairperson. And now, ladies and gentlemen, as we open the dialogue with our distinguished dignitaries on the dais, may I first request Shri Tushar Mehta Ji, Honorable Solicitor General of India, to kindly address the gathering.
1: Abh sambodhan Bharat.

0: Pollution and water scarcity are interconnected challenges, and their effective management depends upon cooperation between jurisdictions, sharing of knowledge and resources, and equitable responsibility sharing among nations inter se. Perhaps then the five elements of nature, which I referred to earlier, may also become Pancha Sankalp, or five commitments that environment leadership demands of us: the steadiness of earth, the adaptability of water, the urgency of fire, the openness of air, and the breadth of space. The environmental challenges of our time require all five. This conference, I hope, has provided a valuable opportunity for engagement across jurisdictions and traditions, and an exchange of valuable experiences. I wish all of you continued wisdom and strength in the important work that lies ahead of us. Thank you for your kind attention. Namaskar.
1: ये थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती बीवी नागरत्ना जी, आपका संबोधन हुआ। माननीय न्यायमूर्ति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पंच सिद्धांतों की बात की, साथ ही उन्होंने पंच संकल्प का भी जिक्र किया कि किस तरह से दुनिया में पंच संकल्प के जरिए पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। और जिस तरह से ये सम्मेलन हुआ, यहाँ पर दो दिन के सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और अब इस समय यहाँ पर स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है, और हमारे सभी जो गणमान्य अतिथिगण हैं वो खड़े हो गए हैं और स्मारिका को भेंट कर रहे हैं। इस समय
2: श्री मनोहर लाल, the Honorable Union Minister, releasing the souvenir of the National Green Tribunal and presenting the first copy to the Honorable President Srimati Draupadi Murmu. A commitment by India for the future of the world, of bringing every aspect together, of bringing diplomats, researchers, scientists, scholars together for the fact that the future of humanity shall be shared. Now, the time has come for the speech by Honorable Minister Sri Manohar Lal ji, the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs and Minister of Power. Sri Manohar Lal ji will now address this August gathering.
3: तो माननीय मंत्री जी के विचारों को आमंत्रित करते हैं, और मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को, the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs and the Minister of Power.
4: महामहिम राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जस्टिस श्रीमती बीवी नागरत्ना जी, माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माननीय अध्यक्ष श्री तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देश विदेश से पधारे हुए डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज, देवी और सज्जनों, नमस्कार। मुझे लगता है कि आज बहुत सही समय पर मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आने का अवसर मिला है। आज ही मैं अमेरिका से लौटा हूं, जहां ह्यूस्टन में G20 एनर्जी अबंडेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। वहां भी हमारी चर्चा के केंद्र में यही प्रश्न था कि दुनिया की बढ़ती ऊर्जा और विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए हम एक ऐसा फ्यूचर कैसे बनाए जो सिक्योर, अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल हो। और मैं धन्यवाद देता हूं एनजीटी के सभी साथियों को जिन्होंने इस दो दिवसीय चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज केवल चिंता का विषय नहीं है बल्कि चिंतन का विषय है। और जब हम किसी चीज की चिंता से निकल

अगर उस पर चिंता करने लगते हैं तो समस्या का समाधान जरूर निकलता है। साथियों, ये वह क्षण है जब जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक परिकल्पना से निकलकर सार्वजनिक और राजनीतिक चेतना का विषय बन गया है। और आज इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर जहां द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स थीम पर पिछले दो दिनों से विचार विमर्श हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसमें भी यही भावना प्रमुखता से सामने आई होगी। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ ही भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद डेडिकेटेड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और पहला डेवलपिंग कंट्री बन गया है। ये हमारी उस पुरानी सोच का आधुनिक इंस्टीट्यूशनल रूप है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को महत्व दिया गया है। साथियों, भारत आज तेज गति से विकास और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, एनर्जी की जरूरतें बढ़ रही हैं और साथ ही हमारे शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने चुनौती केवल बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह पूरा करने की है कि विकास की गति भी बनी रहे और पर्यावरण के साथ संतुलन भी। पावर तथा हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स दोनों मिनिस्ट्रीज की जिम्मेवारी संभालते हुए मैं इस चुनौती को बहुत करीब से देखता हूं। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, हमारी बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। मई में लगातार चार दिन तक बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बनाए और इस वर्ष 21 मई को यह सर्वकालिक उच्चतम स्तर अर्थात 270.82 गीगावाट तक पहुंच गई थी। बढ़ते हुए भारत को अधिक बिजली चाहिए, अधिक आवास चाहिए, बेहतर मोबिलिटी, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। साथियों, एनर्जी सेक्टर में हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2026 तक हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 304 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इसमें सोलर एनर्जी अकेले लगभग 168 गीगावाट है। आज हमारी इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का लगभग 55% नॉन फॉसिल सोर्सेज से है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही भारत ने रिकॉर्ड 44.6 गीगावाट सोलर और लगभग 6 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पावर सेक्टर में 50% नॉन फॉसिल सोर्सेज की हिस्सेदारी का जो लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया था, उसे जून 2025 में 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारी संस्कृति भी। अब इसी सोच को हम अपने शहरों के विस्तार और विकास में भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। आज हम जो शहर बना रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम आगे शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अभी अर्बन चैलेंज फंड लेकर आए हैं। अमृत 2.0 के माध्यम से हम शहरों में वाटर सिक्योरिटी और सीवेज सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी हमारे अर्बन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज देश के 29 शहरों में मेट्रो और RRTS ऑपरेशनल या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लगभग 1170 किलोमीटर नेटवर्क ऑपरेशनल हो चुका है और करीब 1013 किलोमीटर निर्माणाधीन है। आज हम मेट्रो के जहां तक विषय है, दुनिया के तीसरे बड़े देश में आ चुके हैं। हमारे से पहले केवल चाइना और USA है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले 2 वर्ष में हमारा स्थान दूसरा हो जाएगा, हम USA से भी आगे निकलेंगे। इसी के साथ देश में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 25.5 लाख EVs रजिस्टर्ड हुए और कुल व्हीकल सेल्स में EVs की हिस्सेदारी 8% से अधिक रही है और ये सब हमारे साझा प्रयास और चिंतन का ही परिणाम है। साथियों, आज जब हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ये केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं रह गया, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जब

0: को नहीं बचाएगी बल्कि हमारे भविष्य को भी बचाएगी। आइए इसी भावना के साथ हम विकसित भारत और सस्टेनेबल भारत की ओर आगे बढ़ें। मैं पुनः आप सभी को इस सार्थक और सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुझे आप सभी के बीच आने और इस चर्चा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: ये थे माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी। आपने विकास और पर्यावरण के बीच किस तरह से संतुलन किया जा सकता है इस पर प्रकाश डाला।
2: मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड भारत, अ सस्टेनेबल भारत इज इंडिया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इमेंस, covering all the areas with our bias to keep the environment protection to be of utmost importance. Now, it's the time for the chief guest of this international conference, Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, to address the August gathering.
3: केंद्रीय शहरी और आवासन कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी जजेस, देश विदेश से आए सभी डिग्निटरीज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सभी स्वजनों, सभी को नमस्कार। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित इस आयोजन में अनेक देशों के विशेषज्ञों, न्यायाधीशों, विधि विद्याओं और पर्यावरण के मुद्दे पर सक्रिय प्रमुख स्टेक होल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और उनकी समर्पित टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पर्यावरण से जुड़े लीगल मैटर्स ने एनजीटी में की विशेष भूमिका है। मुझे बताया गया है कि ट्रिब्यूनल ने बहुत बड़ी संख्या में विवादों का त्वरित निपटारा किए हैं। देश में नदियां, एयर क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में ट्रिब्यूनल ने एक प्रभावी कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर विकसित किया है। ये सराहनीय है। ये आयोजन एनजीटी के पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श करने की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है। यह सर्वविदित है कि क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है। क्लाइमेट इंपैक्ट पहले से अधिक तीव्रता और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से सामने आ रहा है। फूड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी क्लाइमेट चेंज गंभीर प्रभाव सामने आ रहा है। ऐसी जटिल और अनिश्चितता चुनौतियों का सुनिश्चित प्रकार से सामना करने के लिए नीतियों, और कार्रवाई का एक

संगठित ढांचा आवश्यक है। ऐसा व्यवस्था जिसमें केवल सरकारी और कानूनी विशेषज्ञों ही नहीं बल्कि वे समुदाय भी सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए जिनको क्लाइमेट चेंज सर्वाधिक प्रभावित करता है। ग्रामीणों और वनवासी समाज, छोटे किसान, महिलाएं तथा अन्य वल्नरेबल कम्युनिटीज की आवश्यकताओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं को पड़ता है। देवियों और सज्जनों, दुनिया की अधिकतर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के पास सदियों से संजोया हुआ पारंपरिक ज्ञान हुआ करता है। प्रकृति के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ साथ रेजिलियंस और क्लाइमेट एडप्टेशन उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। मेरा बचपन सुदूर ग्रामीण अंचल में बीता है। प्रकृति से जुड़कर जीने की जनजातीय समाज की सरलता और रेजिलियंस को मैंने स्वयं अनुभव किया है। अपने बचपन का एक उदाहरण मैं कभी कभी देती हूँ, आज भी उसको दोहराना चाहती हूँ। मेरे पिता घर में खाना बनाने के लिए पास के जंगल से सूखी लकड़ियां लाते थे। लकड़ी को जलाने के लायक बनाने के लिए और एक बार उसको घर में उसको कटना पड़ता है। जो उन्हें कटना शुरू करते हैं उसके पहले उसको नमन करते हैं। मैं बहुत बार देखा, मैं छोटी थी तो मैं मन में क्वेश्चन आया कि ये तो सूखा है, ये सूखा लकड़ी को क्यों नमन करते हैं। मैं एक दिन पूछा कि पिताजी ये तो सूख गया है, हम इसको जलाने वाले हैं, तुम नमस्कार क्यों करते हो। समझ में आ रहा है कि एक जिंदा पेड़ को कटने से वहां से खीर निकलता है और उस और जिंदा होता है, ये मुझे समझ में था। लेकिन ये सूखे उन्होंने नहीं, आज वो सूख गया फिर भी मेरे हम लोगों के काम में आ रहा है, हम लोगों का सेवा में काम में आ रहा है। जो एक जिंदा था, जो एक जिंदा था वो हवा दे रहा था, हम ऑक्सीजन दे रहा था, अम्लजान हम कहते हैं, अम्लजान दे रहा था। इसके जोड़े, इसके पत्ता, इसके छल्ली को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके फूल फल हम खाते थे, इसके पेड़ को हम घर बनाते थे। तो आज वो बूढ़ा हो गया फिर भी हम लोगों का सेवा करता है। इसलिए इससे ही आपको पता चलता है जनजाति के लोग कितने संवेदनशील अपने प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति। पेड़ पौधा, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को मेरे गांव लेकर गई थी, उनको ऐसे नहीं कि मैं गांव बहुत सुंदर चलिए देखिए, ऐसे नहीं। जनजाति के लोग कैसे पेड़ पौधा को पूजा करते थे, आज भी हम कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई फोटो हम बनाते नहीं, हम पेड़ पौधा को ही पूजा करते हैं। एक जाहिरा कहा जाता है, वहां बहुत सारे पेड़ रहता है, हम साल में जैसे सालों में 12 मास में 50 पर्व होता है, ट्राइबलों का भी होता है, लेकिन वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। सामूहिक रूप में गांव के बीच में एक रहता है ऐसे जगह जहां पेड़ सूखा पेड़ को नमस्कार करते हैं और गांव का अंत में जाहिरा रहा है। सब सभी गांव में जितने भी संथाल गांव है वैसे बहुत सारे ट्राइबल, जितने शेड्यूल लिस्ट में संविधान के शेड्यूल लिस्ट में जितना ट्राइबल सूची में है, जितने ट्राइबल लोग हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ट्राइबल जिसको हम आदिवासी कहते हैं, आज उसको वनवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं। हम आदिवासी, पहले से हमको सिखाया गया हम आदिवासी है, आदिम आदिवासी। तो आज भी जंगलों को पूजा करते हैं, आज भी पेड़ पौधा पूजा करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जी गए थे वहां नमन किए, उनका कोई बहुत सारा प्रसाद, बहुत सारे जगजमक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अरवा चावल और नमन, आज भी वो मानते हैं। तो और ये एक कहानी नहीं है, हम जो 5 एलिमेंट्स कहते हैं उसको पूजा करते हैं, केवल पेड़ को नहीं पूजा करते हैं, धरती को भी पूजा करते हैं।

पहाड़ को पूजा करते हैं। आज भी हम लोगों का बड़ा वाला जो ठाकुर जी है वो मारंग गुरु मीन्स सबसे बड़ा पहाड़ के अधिकारी, उसका नाम कोई नहीं है लेकिन हम बड़ा वाला पहाड़ आज भी पूजा करते हैं और धरती को पूजा करते हैं। इसीलिए मैं घर पे सबसे बड़ी थी, घर के पास में जो जमीन है, जमीन पिताजी के साथ में जाती थी। पिताजी जब हाल चलाते थे या फावड़ा मारते थे उसके पहले धरती को नमन करते थे। मैंने बोले तुम क्यों करते हो, मैं बार बार मैंने देखा। उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं फावड़ा मारते हैं, हम लोगों के आवश्यकता के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन धरती के ऊपर भी अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे कीट, बहुत सारे चीजें वहां रहते हैं, बास करते हैं। हम लोगों को हाल चलाने से, फावड़ा मारने से उन लोगों का जान चला जाता है। तो इसीलिए मैं धरती माता को नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता हिसाब से इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। विनम्रता की ये भावना हमारी संस्कृति में रची बसी है। ये मनुष्य और प्रकृति के मूलभूत संबंधों को समझदारी से स्वीकार करती है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं। मुझे बताया गया है ऋषि मुनि जो पेड़ पौधा धरती आकाश जीव जंतु से भी बातें करते हैं, करते थे। इसीलिए उस टाइम एक ऋषि कहते हैं जो ये तो वेद की वाक्य है, यत्ते भूमे बिखनामी हिप्रं तदोपि रोहतु। इतमें ऋषि जी कहते हैं जब पृथ्वी को कहते हैं मैं तुमसे जो कुछ लेता हूं उसे शीघ्रता से लौटाने के लिए प्रयत्न करूंगा। इसीलिए हम अभी जिस युग में जीते हैं, मैं जो छोटी थी जंगल गांव से सटा हुआ था, लेकिन आप वो नहीं है। उन दिन भी उसी दिन में भी लोग रहते थे, गांव में रहते थे, लकड़ी आके जलाते थे, लेकिन आज हम पत्ता का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस शुरू किए हैं जो हमको जिंदगी जीते हैं। मुझे लगता है इसको कम कर देना चाहिए। पत्ता को हम साल भर बार बार तोड़ेंगे तो पेड़ कैसे बढ़ेगा, इसीलिए उसको जीने देंगे तो हम लोगों को भी जीने देंगे। क्योंकि आप साल भर पत्ता तोड़ेंगे तो और कैसे जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस, हम वो लोग साइंस के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये लोग जिएंगे तो हम जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस कहते हैं कि पत्ता से और पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। तो फिर वो पेड़ को ही बार बार तोड़ा जाए तो पेड़ कैसे बचेगा। आज युग बदल गया है, हम लोगों के पास गैस है, हम लोग गरीब लोगों को भी आज पक्का घर दिया जाता है, तो जंगल क्यों कम होता है। इसीलिए कहते हैं सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले आप परिवर्तन हो जाए तो धरती आपे आप परिवर्तन। ये सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स स्थानीय समुदाय की प्रथाओं और उनके जीवन के अनुभवों की क्लाइमेट अडॉप्टेशन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज पर आधारित पीपल सेंट्रिक और कम्युनिटी बेस्ड अडॉप्टेशन के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलियंस को सुदृढ़

0: करने के प्रयास करते चाहिए करने चाहिए। क्लाइमेट रेलियंस बढ़ाने में सस्टेनेबल अफोर्डेबल की भी अफोर्टेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं, उसमें फॉरेस्ट की अफोर्टेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अफोर्टेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को एडवोकेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अफोर्डेबल तथा विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता से भी जुड़ा है। रोप टू सोलर पैनल्स उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार की ऐसे ही एक पहल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भारत के एनर्जी लैंडस्केप को नया रूप दे रही है। विकासशील देशों को ऐसा मार्ग तय करना चाहिए जो विकास की गति को सुनिश्चित रखते हुए रेजिलेंस बढ़ाए। जिम्मेदार क्लाइमेट एक्शन की प्रतिबद्धताएं देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। ये तकनीकी रूप से फिजिबल भी होनी चाहिए। मुझे बताया गया है सम्मेलन में ऐसे अनेक पहलुओं पर चर्चा हुई। एक और महत्वपूर्ण विषय है आधुनिक विज्ञान और समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को साथ जोड़ना। रिमोट सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव मॉडल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय समुदाय के जीवन अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ये समन्वय क्लाइमेट विस्टम के ऐसे युग का सूत्रपात कर सकता है जो अधिक प्रभावी क्लाइमेट रेस्पॉन्स का मार्ग प्रशस्त करेगा। देवियों और स्वजनों, भारत की युवा आबादी देश की अत्यंत मूल्यवान संपदा है। युवाओं और जनसाधारण को जोड़कर पर्यावरण चेतना बढ़ाने की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सरकार की मिशन लाइफ पहल ने ये दिखाया है कि जन भागीदारी और कम्युनिटी ओनरशिप के माध्यम से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए बहुत सार्थक कार्य किए जा सकते हैं। सरकार के कई अन्य पहलों को भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के प्रभावी कार्यक्रम के रूप में वैश्विक सराहना मिली है। मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, न्यायपालिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, एक्टिविस्ट और अन्य हितधारकों के इस सभा में अनेक इनोवेटिव दृष्टिकोण सामने आए होंगे और इस मंथन के फलस्वरूप अनेक व्यवहारिक समाधान विकसित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन का समावेशी नीतियों और प्रभावी कार्यों के आधार पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटीज के निर्माण की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान रहेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। उपयोगी अनुभवों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशेष प्रशंसा के पात्र है। मैं आप सभी के प्रयास के माध्यम से सस्टेनेबल और सुनिश्चित भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: Request you all to please rise.
2: And now it's time for the national song and the national anthem. That'll be played by the Rashtrapati Bhavan military band.

0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच से प्रस्थान के लिए तैयार हैं। सभी लोग खड़े होकर उनको अभिवादन कर रहे हैं और धीरे धीरे मंच से प्रस्थान सभी गणमान्य व्यक्तियों का।
1: As the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, highlighted that the soils, rivers, mountains, forests, the five elements are highly revered in our culture. Our country knows how important, how vital these are for our survival. Every Indian should be proud, every citizen should be proud that ancient Indian traditional knowledge systems combine science and values to give the highest regard to nature. As quoted by Sir David Attenborough and included in his speech by Honorable Justice Prakash Srivastavji, the chairperson of NGT, what we do now shall have a profound impact on the next 1,000

0: thousand years, as stated by Justice Honorable Srimati B.V. Nagaratna ji, Honorable Judge of Supreme Court of India, that we have to learn from the Panchabhutam, from the five elements. From earth, we learn patience and steadiness. From air, broad-mindedness and adaptability. From fire, warmth and energy. From sky, equality. And from water, purity and continuity. Let's hope that all the objectives of the conferences, like the knowledge exchange, like innovation and technology, like policy development, collaborative action and public engagement, all are working together, all work in a better way, for a better future, for a combined future, for all of humanity.
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न सिर्फ वर्तमान में विश्व के भविष्य में इस गंभीर विषय को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया, ताकि इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया जा सके और हमारे इस पृथ्वी और पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित बनाए रखा जा सके, जहां तकनीकी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसी के साथ मैं यहां मौजूद आकाशवाणी की पूरी टीम, तकनीकी सहायता के लिए श्री कमल सिंह, सुमित कटियार, नकुल, मोनिका और अभिषेक के साथ ओबी कार्यक्रम प्रभारी श्री जय सिंह और संपूर्ण मार्गदर्शन और समन्वय के लिए श्री प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं। आइए इसी संकल्प के साथ कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और इस धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।

0: दोस्तों, अभी आप माननीय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में दिल्ली केंद्र से प्रसारित पर्यावरण एवं जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन सत्र का सीधा प्रसारण सुन रहे थे। आप सभी का हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं दोस्तों आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। वो कहते हैं ना कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वो कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। संचरण निष्पादक गई रति, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा तथा स्टूडियो और एचपीडी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हुए आप सभी की अपनी आर्य अपर्णा मौजूद है आप सभी के खिदमत में। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, गुड इवनिंग। ईटानगर के तो समापन हो ही चुका है प्रोग्राम का, लेकिन हम शुभारंभ करेंगे इवनिंग ड्राइव के साथ। और दोस्तों, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा कर देते हैं अपनी सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान जो आपके साथ मौजूद थे, आप सभी के चहेते आरजे दाग में ननास का, जिन्होंने जाते जाते मुझे स्टूडियो हैंडओवर करके गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच दाग में ननास आपका मुझे स्टूडियो हैंडओवर करने के लिए। और बस दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।

0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: तो चलिए दोस्तों, शुभारंभ कर ही देते हैं। जी हाँ, इवनिंग ड्राइव के सेगमेंट के साथ बिल्कुल बैक टू बैक जाएगा आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए।

0: सब पर होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे इस सेगमेंट पे पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल अब से बस कुछ ही देर में आपकी शाम को खास बनाने के लिए पेशे खिदमत करेंगे शाम की महफिल। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
5: Dil se dil tak बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
6: गीत संगीत,
7: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
6: प्यार भरे अल्फाजों में
7: दिल से दिल की बात,
6: बस आपके नाम।
7: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वाकई में दोस्तों, आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी की खिदमत में, आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम लेकर पेशी खिदमत करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शाम की महफिल। वैसे आज जो संडे है और हो सकता है कि इस वक्त आप बिल्कुल रेस्ट के मूड में हो, या फिर कहीं बाहर हो, किसी खास के साथ हो, एक कप चाय या कॉफी की इश्क वाली चुस्कियां ले रहे हो। और दोस्तों, ऐसे में अरुण एफएम आ जाता है लेकर, जी हाँ बिल्कुल, शाम की महफिल, क्योंकि हमने वादा जो किया है आपके शाम को परफेक्ट एम्बियंस देने की, आपके शाम को खुशनुमा, खुशहाल, मदहोश करने की। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त आप सब सुन रहे हैं मुझे, यानी कि आप सभी की अपनी आरजे अपना को, साथ ही आपके आज के चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में मौजूद है राह के हमराही, संचरण निष्पादक गए रहते, तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा, तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद मेरे ढेर सारे साथी आप सभी के खिदमत में बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और मौजूद है आप सभी के शाम को खास बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता, वो किसी की याद बन जाता है, किसी का इंतजार भी बन जाता है, और जब बात हो उस दौर के सदाबहार नगमों की, तो एक ऐसा गीत आता है याद में जिसमें बिरहा भी है, यानी कि बिछड़न भी है, प्यार भी है, और किसी अपने के लौट आने का पुकार भी है। तो जरा दिल को थाम लीजिए, यादों की खिड़की खोलिए और सुनिए इस बेहद खूबसूरत सी गीत को।

0: दोस्तों, कभी कभी शाम इतनी खूबसूरत होती है कि दिल चाहता है वक्त यही थम जाए। जी हाँ, जब मोहब्बत, एक दौर था जब मोहब्बत चिट्ठी में लिखी जाती थी और मुलाकातें चाय के प्याले के साथ होती थी। जी हाँ, जब एक दूसरे से दिल कहता है कि जरा और ठहर जाओ, ये पल अभी अधूरा है, तो बस एक एहसास जैसे किसी ने आपके दिल की धड़कनों को सुरों में पिरो दिया हो। ऐसे प्यार भरा दिल, दर्द भरा और प्यार भरा जो है नगमा निकलता है, जो बार बार अर्ज करता है कि अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुँचाना चाहते है तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।
1: दोस्तों, आप सब आनंद उठा रहे थे। जी हाँ, शाम के महफिल के सेगमेंट से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे और साथ ही दोस्तों हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आपके शाम को यानी कि आज जो संडे की शाम को खास बनाने में हम बिल्कुल खड़े उतरे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एफ एम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्म गीतों के साथ। वैसे मैं आज आपको कुछ बातें बताना जरूरी समझती हूँ क्योंकि आज अभी का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं आप, हम, हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग अफेक्ट हो

रहे हैं। जी हाँ, वो है क्या? वो है खर्चे, खर्चे, खर्चे। जी हाँ, यानी कि एक्सपेंसेस, पॉकेट खाली होने की तरीके, है ना। और इससे कहीं ना कहीं घर की जो बजट है वो बिगड़ जाती है। बच्चों की जीत, खुद की ख्वाहिश, हमारी अपनी ख्वाहिश, कुछ ऐसी ख्वाहिश जो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम दिखावा के दुनिया में रहने वाले जो है ऐसे खर्च हम करने लग जाते हैं। बाद में घर में आने के बाद हम पछताते जरूर है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारे तो सेविंग्स खाली हो गए। मेरे साथ भी अक्सर होता है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यही बातों को आप तक मैं पहुंचाऊं। सबसे पहली बात, आजकल हमें क्रेज है, भले ही हम ऊट पटांगे रील्स बनाते हैं या कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन हम ख्वाहिश रखते हैं कि एक अच्छा फोन, जो लेटेस्ट वर्जन है, वो हम ले लें। जी हाँ, iPhone 18 लॉन्च हो चुका है और जो है इतना महंगा है कि लोगों ने प्री बुक करना शुरू कर दिया। वैसे आप भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, या आपकी बहुत सारी जरूरतें जो है बहुत खास इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं जो आप फोन के थ्रू से ही करते हैं, तो फिर आप आईफोन लीजिए। वरना जो है दोस्तों, खामखा बेकार में इतने पैसे नहीं फेंके। हमारा रेंज जितना है, कहता है ना, चादर उतनी ही फैलाओ जितने पैर, उतनी ही फैलाओ जितना चादर आपका हो, उससे क्रॉस नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो है फोन 2-3-4 साल यूज करने के बाद में खत्म। आजकल तो बैटरी भी डुप्लीकेट मिलता ही नहीं है, रिप्लेसमेंट आता नहीं। फोन खराब यानी कि फोन फेंक दो। तो मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आईफोन ना खरीदे आप सब, लेकिन एक बार खरीदने से पहले बाकी और ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा और अपनी जरूरत को भी। जी हाँ, हम जो है परचेस कर लेते हैं कुछ भी बिना सोचे समझे, तो बाकी बातें तो हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन ये जो फिजूल के पैसे हम बर्बाद करते हैं ना, उसके ऊपर में ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं कुछ बातें आज आप सभी को बोलूंगी और आप सब बोलना ही पड़ेगा, आप सभी को, खुद से भी आप सोचेंगे हाँ, मैं भी ऐसा करता जरूर हूं। अपर्णा ने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे पहले हो जाए एक प्यार भरा गीत आप सभी के लिए। पैसा ओ पैसा, मनी ओ मनी, स्वीटर देन हनी।

नेक्स्ट जो है दोस्तों, क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मेरी तरह? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मेरी तरह, तो अभी जो मैं बात बोलने जाने वाली हूं, यानी कि बोलने वाली हूं, वो पक्का आप मेरी तरह तो करते जरूर होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं ना दोस्तों कि मैं वही चीजें आप सभी से शेयर करती हूं जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूं, चाहे बैड एक्सपीरियंस हो चाहे गुड एक्सपीरियंस हो। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग कौन नहीं करता आज के जमाने में, सभी लोग करते हैं। लेकिन जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप देखिएगा, लेना आप कुछ चाहते हैं, ले बहुत कुछ लेते हैं। मेरे साथ भी कल ऐसे ही हुआ। अनाप शनाप शॉपिंग करने के चक्कर में फ्लावर वैस, फ्लावर्स, प्लास्टिक प्लांट्स करते करते 6,000 रुपए कैसे क्विट हो गए पता ही नहीं चला। जब सुबह उठी तो मुझे लगा कि ये मैंने क्या किया। आप भी ऐसे ही करते होंगे ना फ्रेंड्स? जरूर। ऑनलाइन शॉपिंग हमें डिस्काउंट ऑफर तो बहुत देता है ना? और शायद इसी के लालच में आके जो हमें लेना है वो तो हम लेते हैं, लेकिन एक के साथ में चार पैसा देकर हम खूब खरीद लेते हैं। और यहां जो हमारा यूपीआई से छटाछट पेमेंट कट रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं। और पता ही होगा कि 15 तारीख से आने वाले 15 तारीख से क्या होने को है। वैसे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कभी कभी कि कुछ हद तक रेगुलेशन होना, रूल्स एंड रेगुलेशन होना जरूरी भी है। शायद इसके थ्रू से हम थोड़ा सा बचत कर ले, है ना दोस्तों? तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय में आप वही कीजिए जो आपकी जरूरत है। मेरी तरह से फिजूलबाजी खर्च एक के बदले में 4, 6, 10 खरीदारी मत कीजिए। एक और खास बात, पहले छोटे छोटे दुकानें हुआ करती थी, हम वहां जाते थे, घर के लिस्ट बनाते थे और आइटम्स के लिस्ट बनाते थे, चाहे वो ग्रोसरी हो या फिर कुछ भी आइटम्स क्यों ना हो, है ना? साबुन कितनी चाहिए, सोप कितनी चाहिए, शैम्पू कितनी चाहिए, डिश वॉशर कितने चाहिए, मतलब कुछ भी हम लिस्टिंग करके लेके जाते थे। लेकिन अब वो दिन गया। जी हाँ, हम डायरेक्ट मॉल में जाते हैं। जब हम मॉल के अंदर जाते हैं तो हमें चमकीला दुनिया देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ये एक्सपीरियंस आप सब जरूर करते हैं। आप सब जो भी सुन रहे हैं ना मुझे, आप सब जरूर जरूर इन चीजों को तो करते ही है मेरी तरह। इसलिए मैं जो है बता रही हूं ये बातें। और ये मॉल वाले इतने चालाक होते हैं कि सारी सामान हमारे आंखों के बिल्कुल सामने में छकाछक से रख देते हैं। पहले तो हम अपनी जरूरत की सामान को ही लेते हैं और उसके बाद जैसे देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री, बस हमने एक खरीदा और एक के चक्कर में और एक खरीदा, फिर डिस्काउंट में हम जाते हैं कि डिस्काउंट में

हमें कितना दे रहा है, और हम ये भूल जाते हैं कि सेल डिस्काउंट में एक्चुअली 50% डिस्काउंट में या फिर 25 डिस्काउंट में 30% डिस्काउंट में एक्चुअल प्राइस क्या है वो तो हम सोचते ही नहीं है, ना ही हम काउंट भी करते हैं कभी भी, और उसके साथ में टैक्स लगता है वो है अलग। लेकिन हम इन चीजों से बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल बिंदास हो जाती हूं, और जो मुझे नहीं खरीदना है वो मैं हर जगह से खरीद के सब कुछ लेके आती हूं, और जब मुझे लंबे लाइन लगाकर, आप लोगों को भी जब आप लंबा लाइन लगाते हैं ना, और लगाने के बाद आप जब वहां पहुंचते हैं बिल काउंटर पे, पे करना होता है, और तब आप देखते हैं कि अरे 15,000, अरे इसका तो रेट इतना था, इतना कैसे हो गया, तब हम झेप के मारे, शर्म के मारे में, ना चाहते हुए भी, हाय हाय करते हुए हम उन चीजों को खरीद ही लेते हैं जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं, है ना दोस्तों। मैंने आपकी असली जो है दुखती रग पर उंगली रख दी, मेरे खुद की दुखती रग पर मैंने खुद ही उंगली रख दी दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं, है ना। तो हमें इन चीजों से बचना जरूर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक और गीत आप सभी को मैं सुना दूं, एंजॉय कीजिए।

एक और खास काम हम करते हैं दोस्तों, वो है ऐप इंस्टॉलेशन, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, तो जियो हॉटस्टार और दुनिया भर का एंटरटेनमेंट चैनल प्लेटफॉर्म्स, जिसका आप और हम जाने अनजाने सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। पहले आपको फ्री में दिया जाता है मोबाइल रिचार्ज के तहत, और फिर मंथली या ईयरली आपके कार्ड से कार्ड लेते हैं, और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम किसी एक्स्ट्रा चैनल को देखें, लेकिन जो है पैसा दम दमादम करते जाता है। जी हाँ, और आजकल तो सीखो ऐप में सब कुछ है। पहले बोलते हैं 1 रुपया, उसके बाद में मंथली काट ना शुरू करते हैं, और आप उससे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। अनसब्सक्राइब करना भी बेहद मुश्किल है, जाने अनजाने हम जो है बहुत सारे गेम्स में चले जाते हैं, फ्री के गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारा पैसा, कुछ एक फिश वाला गेम आता है वो तो अकाउंट ही खाली कर देता है, तो आपका पैसा वैसे ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि ऐसे एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्री सब्सक्रिप्शन ना ले, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बिल्कुल तो कोशिश ही ना कीजिए, नहीं तो हमारा तो हालत क्या है दोस्तों कि हम तो क्या है पैसा लुटा देते हैं। और अभी अभी अदनान सामी ने कहा है ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, और हम ऊपर वाले से पैसे की मांग करने लग जाते हैं, लेकिन इन पैसों को हम कदर ही नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मॉल में बहुत सारे स्टोर जो है, दुकानें जो होते हैं ना बहुत सारे, अगर आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां तो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स जो होते हैं, वहां आप अगर एक लिपस्टिक या फिर एक कोई भी एक सामान खरीदना चाहेंगे तो वहां आपको दिखाने के लिए जो है वहां के जो सेलर्स लोग हैं वो लोग आगे आ जाएंगे। मैम वुड यू काइंडली ट्राई दिस वन, दिस इज अ न्यू शेड फॉर यू, बोलते हैं ना दोस्तों, आपको ये भी बताते हैं ना, सर इसे ले लीजिए इसके साथ। अब मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूंगी बिल्कुल, आपने 11,000 का ये शू आता है और इसके साथ जो है आप लेंगे ना तो आपको एक टी शर्ट जो है 11,000 में, ये 15,000 क्या है 11,000 में आपको मिल जाएगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये 11,000 का शू लेके हम करेंगे क्या, हमारी अगर आमदनी महीने की अगर 2 लाख है तो फिर तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास में वही बात है ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो ऐसे में हम शिकार हो जाते हैं उनकी जो है भोली बहाली और चिकनी चिपड़ी बातों में, और एक लिपस्टिक के बदले में हम 4 शेड्स सेम ब्रांड का लेके अलग अलग शेड्स के आ जाते हैं। हम लेडीज तो और भी, हम लेडीज को तो क्रेज होता है, भले ही हमारे अलमारी में है ना, अलमीरा में, वार्डरोब में कपड़े ठूसे हो, लेकिन फिर भी पार्टी में या कहीं बाहर जाते वक्त हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि हमारे पास में कुछ है भी पहनने के लिए, और हम हर ओकेशन से पहले, पार्टी से पहले भी पार्टी वेयर खरीदने के लिए चले जाते हैं मॉल में, और एक के साथ में 4 बोझा लेके आते हैं, और बाद में सोचते हैं अरे ये तो मेरे पास में था। होता है ना दोस्तों आप सभी के साथ भी, मेरे साथ भी अक्सर मैं यही करती हूं, तो इसीलिए तो मैं ये बात बोल रही हूं ताकि आप सब, मैं जो गलती करती हूं वो सब आप बिल्कुल भी ना करें। पैसा कमाना बेहद मुश्किल है और गंवाना बहुत आसान। चले एक और प्यार भरा गीत हो जाए आप सभी के लिए, क्योंकि हर चीज के पीछे में तो दोस्तों पैसा और पैसा और पैसा ही है।

दोस्तों मैं तो यही कहूंगी, हाँ हमारा सपना तो होगा, हम इंसान है तो सपने तो होंगे ही, लेकिन घर हो या गाड़ी हो, फोन या फिर जो भी हम कुछ खरीदे, अपने अफोर्डेबल रेट में खरीदे, हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमें तो सोच समझ कर ही चलना होगा, है ना दोस्तों? मुझे भी खास कर, जी हाँ मुझे, आज मैं प्रॉमिस करती हूँ और आप सभी प्रॉमिस कीजिए कि हम ऐसी फिजूल खर्च से बच के रहेंगे, बचा के खुद को रखेंगे और जो है पैसे का सही जगह इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हो सके तो इन्हीं पैसों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कीजिए, फ्रॉड और प्राइवेट कंपनी से बच रहे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने की बातें आपको करता है। सिर्फ याद रखिएगा कि कोई आपको क्यों दो पैसा ज्यादा देगा, है ना?

और जी हाँ, हो सके तो गोल्ड में इस्तेमाल कीजिए, एफडी में रखिए, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में सोच समझ के देख के इन्वेस्ट कीजिए, वो अच्छा रिटर्न आपको देगा। और जो है प्रॉफिट गेन कीजिए, और साथ ही में चलते चलते यही कहूंगी कि फिजूल खर्च से हम सभी को बच के रहना चाहिए। एक के बदले में चार हम ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर मॉल से हम बिल्कुल ना खरीदे, है ना दोस्तों। तो चलिए चलते चलते हमारा प्रोग्राम भी अब ये सेगमेंट अब यहीं पे संपन्न होने को है। बस अब से कुछ ही देर में आप सब सुन सकेंगे आदि समाचार। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को। और मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हुए इस कार्यक्रम से अलविदा चाहूंगी। बिल्कुल आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

से आकाशवाणी ईटानगर तनक दरम असे रूप कुमरुक से दौला से युम का आदि पबुवम इरोप्तुं कराप अधिलोतादम तत्पाय लुबिनसी जस्तीना गम्मेंग सेमिकॉन इंडिया 2026 लोग फिफ्थ एडिशन कॉन्फ्रेंस अम मलोक गकाना दीगोंग दलो यशोभूमि न्यू दिल्ली लो असे रूप इन बोसितो Longa Aum Conference per Bosi Silicon 2 System Building the Ecosystem Amunlok Ilan Bonamko Per Boso Lingko Akin Koper Exhibitor Kedenga Imungato Ayangango Kolang Anyi Country Lok 300 Koper International Ami Kedenga Imungato Dalo 150 Koper Speaker Kedenga Kom Yamungato Japan, South Korea, Malaysia, Netherlands, Singapore, Sweden, Dalo, 12 state kedeng angu-angu semiconductor value chain amkom langkan bito. Perboso ingangu kolang akin koper.

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे साथ अभी से लेकर रात्रि के ठीक 9:10 पर चंद लम्हों का ये खूबसूरत सफर तय करना चाहते हैं, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर अरुण एफएम को। जी हाँ, अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, और आप सब बने हुए हैं संचालन निष्पादक गए रहते तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्म तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ, आप सभी के अपनी आरजे अपना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज करने आए हैं हम एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम, और बस कुछ ही देर में शुरू करेंगे हम आज के कलाकार का यह सेगमेंट। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार्ड जीत जाते तो
1: पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कलाकार के इस बेहद प्यारा सा सेगमेंट में। ये वो सेगमेंट होता है दोस्तों जहां हम फिल्मी जगत से जुड़ी हुई नामी ग्रामी जो है शख्सियत के बारे में बात करते हैं। आइदर क्यों ना वो एक्टर या एक्ट्रेस हो, गीत का संगीतकार हो, फिल्मी जगत से जुड़े हुए कोई भी हो, है ना। तो हम उनके बारे में बातें करते हैं और जो है उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स को आप तक पहुंचाते हैं। तो अपने जमाने से लेकर अब तक जो एक बहुत ही एक्टिव कलाकार है उनके बारे में बातें करेंगे आज। और मैं दावे के साथ बोल सकती हूं कि आप सब उनको जानते हैं, चाहे वो 80s के हो, 90s के हो, और अभी भी जो भी देख रहे हैं जो वो लोग भी क्यों ना हो, आप सब उनको जानते हैं। पॉपुलर फिगर है जो है, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि समाज सेवक, और जी हाँ हमारे पॉलिटिक्स में भी बहुत सक्रिय लीडर में से माने जाते हैं। और जो है इनके अपने जो डांस की वजह से जो है ये आज भी बिल्कुल सेकंड माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया में से भी माना जाता था इनको, जी हाँ एक वक्त। तो इनके बारे में सस्पेंस नहीं रखते हुए मैं बता ही देती हूँ, ये जनान आदा दन मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, इनका असल नाम जो है गौरांग चक्रवर्ती है और इनका जन्म 16 जून 1950 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। जी हाँ, और इनके बारे में अगर हम बातें करें दोस्तों कि ये जो है इन्होंने अपना जो फिल्म कैरियर जो है ये शुरुआत इनकी हुई 1976 की फिल्म मृगया से, और इस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 80 के दशक के अपने सुनहरे दौर में डांसिंग स्टार के रूप में इनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित किया। जी हाँ, इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म डिस्को डांसर्स जो है आज भी

बहुत पॉपुलर है जी। हम 80 के दशक में बच्चन से भी, यानी कि हमारे बिग बी से भी ज्यादा पॉपुलर हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ और बातें बताऊंगी। लेकिन मैंने अभी डिस्को डांसर के बारे में बात किया ना दोस्तों, ये इनके सुपर डुपर फिल्म में से थी, और मैं इस फिल्म के सॉन्ग को तो जरूर सुनाऊंगी आप सभी को। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों ये बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा है। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने

कभी भी सॉन्ग नहीं गाया। कई सूत्रों का दावा तो ये है कि मिथुन चक्रवर्ती को 1986 से 87 तक श्रीदेवी के साथ जो है इनका रिश्ता जुड़ गया था। जी हाँ, जब तक योगिता वाली से किशोर कुमार का तलाक नहीं हुआ था, तब तक ये गोपनीय रूप से श्रीदेवी से शादी भी कर लिए थे। बाद में ये जो है संबंध जो है टूट गया। चलिए बात ही कर लेते हैं इनके फिल्मों के बारे में, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे बताना भी है और प्ले भी करना है। तो बहुत जल्दी मैं बता दूं आप सभी को कि मैंने बताया ही है कि मृगया से फिल्मी जगत में इन्होंने एंट्री मारी थी, और ये जो मृगया फिल्म थी ये मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म थी, और इसी फिल्म के कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इसके बाद जो है इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, इनकी जो फिल्म है हम पांच, सुरक्षा, वारदात जैसी फिल्म में रही, डिस्को डांसर 1982 में जो है पर्दे पे आ, और इसने इस मूवी ने जो है धूम मचा दी। और इसके बाद आ गई कसम पैदा करने वाले की डांस डांस जैसे फिल्में, मुझे इंसाफ चाहिए, प्यार का मंदिर, बॉक्सर, जागीर, जाल, कमांडो, गुरु, वक्त की आवाज, मुजरिम, दुश्मन जैसे फिल्मों में इन्होंने काम किया। और तो और 80s के दशक में अमिताभ बच्चन के एक जो है प्रतिद्वंदी के रूप में भी इनको देखा जाने लगा। और इसके बाद इन्होंने बनाए पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जिनाता मन जैसे बेहद उमदा अदाकारों के साथ इन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई दोस्तों। जी हाँ, और इसके बाद इनका आया जो है फिल्म प्यार झुकता नहीं, जो कि सुपर डुपर हिट रही। तो चलिए दोस्तों, बातें और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को जल्दी से जल्दी कुछ नगमों को सुना दूं इनके सुपर डुपर हिट फिल्मों से, है ना।

2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी हुई और इसके बाद जो है फिर उन्होंने फिल्मी जगत में धमाका मचाना शुरू कर दिया। लकी नो टाइम फॉर लव 2005 में, कल्पना लाजमी की चिंगारी 2005 में, मणिरत्नम की हीट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की जो है प्रशंसा प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने कई सारे फिल्में जो लगाकर हैया के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो है पुरस्कार जीते। और इसके बाद जो है दोस्तों इन्होंने बहुत ढेर सारी फिल्मों में काम किया। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि 1993 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ताहा देर के लिए, कथा के लिए दिया गया। 1996 में सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वामी विवेकानंद के लिए इनको दिया गया। और ढेर सारी अग्निपथ में पत मूवी के लिए ये अमिताभ बच्चन के साथ सहायक कलाकार के रूप में इन्होंने काम किया था, उसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर के रूप में पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट खलनायक फिल्म एक्टर फिल्म फेयर पुरस्कार जल्लाद के लिए भी दिया गया। और जो है दोस्तों इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट स्टारडम पुरस्कार 2007 में मिला। 2007 में इनको रोल मॉडल पुरस्कार भी मिला। वैसे बंगला फिल्मों में इन्होंने कुछ खास ये नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने हिंदी फिल्मों में धमाका मचाया। साल 2024 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। और अब आप मिथुन चक्रवर्ती को जो है डांस इंडिया डांस जैसे जो है सुपर जो शो है जी टीवी के, और डांस बांग्ला डांस जैसे सुपर शो में आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वहां ग्रैंड जज के रूप में काम करते हैं। साथ ही आप इनको जो है लीडर एक अच्छे लीडर के रूप में भी आप देख सकते हैं। हालांकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और फिल्मी दुनिया से ज्यादा ये अब जो है आपका जी हाँ पॉलिटिक्स में है। वैसे हाँ डांस इनका नाता कभी नहीं छूटा। तो चलते चलते एक बहुत प्यारा नगमा प्यार झुकता नहीं का मैं आपको सुनाते हुए चल रही हूँ इस कार्यक्रम को संपन्न करने की ओर। और जो है दोस्तों हम ऐसे ही ख्वाहिश रखते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती सेहतमंद रहे, अच्छे रहे दादा, और हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे मूवीज जो है देखने को मिले। अगर आपने मिथुन चक्रवर्ती की कोई भी फिल्म अब तक नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करती हूँ आप सब जरूर देखिएगा डिस्को डांसर, आप सभी को बहुत मजा आने को है। तराना जैसे फिल्में भी इन्होंने की रंजिता के साथ, बहुत ही खूबसूरत सा मूवी है, मैंने देखा है दोस्तों, आप सब भी देखिए। बहरहाल इस फिल्म फिल्मी

जो ये प्यार झुकता नहीं का जो ये गीत है, मैं आप सभी के लिए पेशे खिदमत कर रही हूँ। और साथ ही मैं बता देती हूँ, शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का, तो मैं आप सभी को इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। मिलते हैं 7:05 पर। टिल देन एंजॉय द ट्रैक।

0: ui nakosun doi kam hoga soso BGP na nam pikosun ni echiboga pikam hoso echidodan hoga so echi nula echi usi madan nuluk ala chiri kolo chetin minsil doklo lakin go davan davan la doi kam nula si echi umadana o gab nula echi dodne domadana ham mod modam kaagda nul medikilo ala nul engam ka katam do jipana o pengkolo muluning HIV la AIDS wa gutu gura lo yin dod lo kam ho ni tu lo ham kam nu la anya bi ya dod yin den sam nu la tim pa do yin ma den sam ya nu la sa ka do yin ne e ma di si sa ka ma ba anya ma tim pa ba nyu kam so ni si HIV ya do ta den o ge sam nu la chen do te kal ba ra nu la chen do lo kam nu la
1: दोस्तों अभी आप निशी समाचार सुन रहे थे। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों वक्त हो चला है, जी हाँ, वुमन एंड फैमिली प्रोग्राम मेरी बात का।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अत। स्वागत करती हूं आप सभी महिला साथियों का महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में। और आज इस अंक में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी जो कानूनी सेवाएं हैं, लीगल सर्विसेस है, उस पर हम आज बात करेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एडवोकेट मिची तमा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले हम लीगल सर्विसेज को समझना चाहेंगे।
3: धन्यवाद आपका प्रश्न के लिए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सबको। मेरा नाम है मिची तमा, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ गुवाहाटी हाईकोर्ट में, और मैं बिलोंग करता हूँ अपटनी कम्युनिटी से। तो लीगल सर्विस हम लोग का लीगल टर्म में बोलने से जो लॉफुल होता है, जो लॉ से रिलेटेड होता है, हम लोग का कुछ प्रोसीडिंग हो, केस हो, या कुछ भी एडवाइस देना हो, किसी का राइट के लिए फाइट करना हो, तो हम लोग जब कोर्ट में पहुंचता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीगल सर्विस।
2: तो लीगल सर्विसेज में सर, जैसे कि जितना तक हमें पता है, लीगल सर्विसेज जो होते हैं क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं?
3: हमारा अरुणाचल में सब डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें हम लोग का रहता है LAC लीगल एड क्लिनिक। जैसे कि हम लोग का हॉस्पिटल में होता है क्लिनिक ना, उसी तरह से हम लोग का लीगल राइट्स को फाइट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, आपका लीगली आपका जो हेल्प मिल सकता है, आप लीगल एड से आप मदद ले सकता है।
2: अच्छा।
3: और लीगल एड जो हम लोग का नालसा से रिलेटेड है, नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी।
2: अच्छा।
3: तो उसके बाद आता है वो नेशनल लेवल में काम करता है, लेकिन स्टेट लेवल में जब करता है तो उसको हम लोग स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलता है। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर में हम लोग आता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके बाद तालुक लेवल में भी जाता है।
2: अच्छा।
3: नीचे में विलेज लेवल में भी जाता है। तो उसमें आप जब लीगल सर्विस आपका आपको चाहिए तो आप एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसमें लीगल एड क्लिनिक खोला जाता है, तो उसमें आप अवेल कर सकते हैं उधर में।
2: अच्छा।
3: तो उसका कंपोजिशन है लीगल एड में दो प्रकार का होता है, LADC और LAC। LAC जो है सिविल केसेस को डील करता है, एंड LADC जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है। और उसमें और एक रहता है PLVs, पैरालीगल वॉलंटियर्स। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स जो होता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहता है जो एडुकेटेड रहता है, जो लिख सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10-12 पास का ना। सो उन्हें किसी एडवोकेट्स को या फिर किसी क्लाइंट को उन लोग को असिस्ट करने के लिए रखा जाता है, पर्टिकुलरली लीगल चीज में। ये है हम लोग का मतलब, जब कोर्ट में आता है तो ये एक फैसिलिटीज आप लोग अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला जाता है। और ये जो आपका इसका डेराइवेशन जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, आर्टिकल 39

0: में दिया जाता है कि स्टेट हम लोग का स्टेट जो प्रोवाइड करना लीगल एड प्री लीगल एड प्रोवाइड करना है बोल के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है तो उसी से इसको हम लोग अवेल कर सकता है थ्रू LLDC या फिर LLC लीगल एड क्लिनिक जो कोर्ट में रहता है
1: फ्री ऑफ कॉस्ट में।
0: यस
1: तो चूंकि ये कार्यक्रम महिलाओं का है तो महिला और जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या लीगल सर्विसेस है?
0: तो चिल्ड्रेन एंड वुमेन से लीगल सर्विस रहता है हम लोग का जो LLC है फ्री लीगल काउंसलिंग है आप लोग का जो भी चीज हो तो पार्टिकुलरली ऐसे बोलने से जो भी मैटर हो वुमेन एंड चिल्ड्रेन से रिलेटेड जैसे कि हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया ना एंड प्रोस्टिट्यूशन हो गया फोर्स लेबर हो गया और आपका राइट टू एडुकेशन हो गया किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर किसी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिल पाता है ये सब में आप मिल जाएगा एंड स्पेशल लॉस रहता है पर्टिकुलरली स्टेट्यूटरी प्रोविजंस दिया है जैसे कि पोक्सो हो गया प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया एंड प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट वर्क प्लेसेस हो गया एंड बहुत सारा लेजिस्लेशन रखा गया है उसमें JJ भी हो गया चिल्ड्रेंस के लिए भी तो बहुत सारा एक लेजिस्लेशन ऐसे रखा है जिसमें हम लोग अवेल कर सकता है थ्रू दिस लीगल एड एंड लीगल एड पर्टिकुलरली फ्री लीगल सर्विस देने के लिए कोई भी हो अगर महिला हो या बच्चा हो सबको देता ही है फ्री।
1: वैसे तो ये मर्दों के लिए भी
0: लागू है।
1: तो वैसे जैसे बोला कि ये प्रोग्राम ही हम लोगों का वीमेन का है इसलिए जो आज इस प्रोग्राम में हम वीमेन और चिल्ड्रेन से रिलेटेड उस पर ही ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आप बता रहे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर आपका प्रोस्टिट्यूशन हो गया और फोर्स लेबर जो भी हो जिस चीज को हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं?
0: सो इसका पर्टिकुलर जैसे कि ये ऑफेंसेस हो गया वुमेन का अगेंस्ट में जैसे कि पर्टिकुलरली कोई कोई हम बोला भी नहीं रेप होता है मेरिज से रिलेटेड होता है एसल्ट होता है मिसकैरेजेस वगैरह होता है तो इसको अवेल करने के लिए मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। फर्स्ट आप करना है लीगल एड को आप पहले उसमें आप जाना है और आप उसमें फॉर्म भरना है एक सिर्फ डिटेल्स होता है उसमें कुछ नहीं होता है डिटेल्स होता है एंड उसके बाद आप रिपोर्टिंग करना है FIR दर्ज करना है चार्जशीट या फिर आप अगर रेप विक्टिम है तो आपका मेडिकल रिपोर्ट होना है आधार कार्ड एज वेरिफिकेशन सब आता है उसमें तो उसको आप जब जमा करेगा लीगल एड क्लिनिक में तो उसके बाद LAC वो डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट जज को जो चेयरमैन रहता है तो चेयरमैन आफ्टर कंसिडरेशन वो आप मैटर को लुकअप करता है उसके बाद फिर फॉरवर्डिंग करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में प्रोवाइड करता है तो उधर से हम लोग अप्रूवल लेके अगर किसी को कॉम्पेंसेशन देना भी हो तो उधर से आप अवेल कर सकता है तो अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश कॉम्पेंसेशन एक्ट 2011 में तो उसमें कैटेगराइज है शेड्यूल 1 में कि रेप विक्टिम का कितना ये आपका कॉम्पेंसेशन आप लोग क्लेम कर सकता है मर्डर का होता है लीन लॉसेस का होता है एंड बहुत सारा उसमें केसेस रहता है तो उसमें आप अवेल कर सकते हैं या फिर आप जैसे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जब कोई रेप विक्टिम एक छोटा लड़की हो और 14 ईयर से नीचे हो उसका तो जब उसका कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो रेप का होता है 5 लाख तो उसका कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट का 50% और बढ़ जाता है ये एक इंफॉर्मेशन है सबको जानना चाहिए इसे एंड अदर आपका सोर्सेस है कि जब आप LADC में जब जाएगा कोर्ट प्रोसीडिंग जितना फीस रहता है ना और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने ना फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग विदाउट एनी पेनी बना देगा
1: सब कुछ फ्री में कर देगा वकील भी आपको फ्री में मिल जाएगा एंड
0: ये भी कहना चाहता है कि जो LADC या फिर LAC वकील जो रहता है उन लोग भी बहुत एक्सपीरियंस वाला रहता है उसमें तो इसलिए मतलब आप लोग डाउट भी नहीं होना है कि ये अच्छा से काम नहीं करेगा ऐसे नहीं होना है सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि जस्टिस आपका जस्टिस के लिए लड़ना आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना सिविल राइट्स के लिए लड़ता है उन लोग भी बहुत नॉलेजेबल वाला पर्सन रहता है और बहुत एक्सपीरियंस जिसका 10-12 इयर्स ऐसे एक्सपीरियंस होता है उन लोग भी LADC या फिर LAC में रहता है तो आप लोग दावत नहीं रहना है इसमें।
1: अच्छा, तो अगर जैसे कभी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, रिपोर्ट

0: नहीं, कोई कोई लोग ऐसे भी है कि वो घर से भी बाहर नहीं निकल सकता है, तो क्या कोई और उस इंसान के लिए कंप्लेन दर्ज कर सकता है?
1: हाँ हाँ यस मैडम, इसमें आप जब कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई भी ऑफेंस हो, नेसेसरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर आदमी उसको करना है, तो कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे आप गांव बुरा भी हो, कहीं बस्ती में होने से उसका पड़ोसी हो, बेटा हो, या कोई भी हो, या फिर इवन मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो, उन लोग भी कर सकता है. और उसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है इसमें, जैसे कि लिमिटेशन कोई कोई में होता है कि पर्टिकुलर केस में इतना इतना समय में करना, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में तो ऐसे नहीं है.
0: इसमें मतलब जैसे अभी कंपेंसेशन के लिए तो हमको पहले FIR वगैरह दर्ज करना है, लेकिन जो कंपेंसेशन को छोड़ के जो भी हम अगर किसी के साथ एक केस करना चाहते हैं किसी के अगेंस्ट में, तो पहले FIR दर्ज करना जरूरी है या हम सीधा किसी एक लॉयर के लिए लीगल एड मांग सकते हैं?
1: इस केस में मैम ऐसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग FIR कोशिश करता है FIR डालने के लिए. सो कभी कभी ऐसे होता है कि सिविल मैटर्स में पुलिस कहता है कि ठीक है आप लोग रिजोल्व करने के लिए कोशिश करो ना, क्योंकि आप कोर्ट में जाएगा तो रिजोल्व के लिए ही बात करेगा, तो कोशिश कर ऐसे करता है, लेकिन उन लोग रजिस्टर कर देगा. इन केस अगर पुलिस ऑफिसर नहीं रजिस्टर नहीं करता है तो SP में जाइए, उसे हायर रैंक में जाइए, तो उसमें भी अगर नहीं लेते हैं तो आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जजेस जो रहता है उसके पास आप जा सकते हैं, तो उसमें आप GR केस बना सकता है, जनरल रजिस्ट्रेशन केस होता है कोई भी बिना FIR करना, तो उधर में डायरेक्शन देगा उन लोगों कोर्ट,
0: वो सीधा आपके पास आके लीगल एड मांग सकते
1: मांग
0: हैं?
1: सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
0: तो उसको अवेल करने के लिए जैसे कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट है या फिर कुछ कुछ जगह पे कुछ फोन नंबर्स या फिर कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर्स ऐसे कुछ होता है लीगल सर्विसेज के लिए, ऐसा कुछ है क्या नंबर?
1: यस मैडम, इसका लीगल सर्विस का अरुणाचल प्रदेश अपसलसा, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो रहता है, उसको आप अवेल कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर है 15100. ये ऑल 24x7 ऑपरेटिव है, और इसमें आप कोई कभी भी कॉल करें तो आप अवेलेबल मिल जाएगा इसमें. एंड
0: सर्विसेज पाने के लिए 15100 पर एनी टाइम कॉल कर सकता है?
1: एंड आप ईमेल भी कर सकता है अपसलसा APSLSA2023@REDIFFMAIL.com में इसमें आप कर सकता है, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेन कर सकता है.
0: अच्छा, किसी इमरजेंसी में भी सर इसमें कांटेक्ट किया जा सकता है क्या
1: यस,
0: किसी
1: ये
0: तरह?
1: 24x7
0: मतलब एक किसी इमरजेंसी सर्विस के लिए कहीं आप फंस गए हैं तब भी इस पे कांटेक्ट कर
1: कर
0: सकते
1: सकता
0: हैं?
1: है.
0: और जैसे कि इस तरह के बहुत सारे लीगल सर्विसेज है जो हम लोगों जैसे आम लोगों को पता नहीं रहता है, तो कितना जरूरी है इस तरह के कानून को जान के रहना, अवेयरनेस होना कितना जरूरी है?
1: तो आजकल का दुनिया में अभी सबको मालूम है कितना आपका ऊपर नीचे होता है, चीज अनजस्टिस कितना होता है, तो कोई कोई रहता है कि मतलब हाँ माफ वगैरह कर देता है ना ऐसे ऐसे, दैट्स वेरी गुड, पर अपना राइट्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. तो आजकल का दुनिया में हम लोग अभी का नया लेजिस्लेशन में भी हम लोग एक जनरल न्यूट्रल एक लेजिस्लेशन बनाता है, तो जब दुनिया इतना आगे बढ़ रहा है अपना जनरल न्यूट्रल को लेके, इक्वालिटी को लेके सब लोग, तो उसमें आपको सबको जानना जरूरी है, आपका डिफेंस के लिए भी, आपका राइट्स के लिए भी, आपके लिए नहीं होने से भी आपका बच्चा के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए बहुत नेसेसरी है ये, इसको जानना बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल।
1: एंड कभी भी आप अवेयरनेस के लिए होने से भी आप ये टोल फ्री नंबर में भी 15100 में कॉल कर सकते हैं, ये 24x7 इसमें रहता है टोल फ्री नंबर, इसमें पैरालीगल वॉलेंटियर्स लोग रहता है, तो उन लोग आपको हमेशा असिस्टेंट देगा कहीं भी हो.
0: तो अक्सर ये औरतों के लिए ये कहा जाता है कि जो कानून है जो लॉज है वो वुमेन के फेवर में बहुत है, तो वुमेन का इसको मिसयूज करने का चांसेस ज्यादा रहता है, ये बातें अक्सर होती है, तो ये बात कितनी सच है? लॉज का मिसयूज क्या वाकई में वुमेन की तरफ से भी होने लगा है? और अगर ऐसा कुछ है तो इसकी क्या सजा, मतलब ये कितना खराब हो सकता है?
1: सिंस ऐसे होता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन जो एक वर्न

0: सेट ऑफ सोसाइटी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का लॉ एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाता है, जैसे कि पोक्सो हो गया वगैरह ना, एंड रेप हो गया, बहुत एक ये एक स्ट्रिंगटेंट लॉ है, इसको बनाता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए. सो कभी कभी ऐसे भी इंस्टेंसेस होता है कि किसी को वेंजेंस लेने के लिए या मेलिशियस ना किसी को बदला लेने के लिए कोई कोई ऐसे वुमेन लुक करता है. एंड एविडेंटली कोई कोई केसेस है, हम नाम बोलना नहीं चाहते उसका, तो ऐसे केसेस है. तो पर्टिकुलरली ऐसे केस में जज जो सुमोटो एक्शन लेगा खुद से फॉल्स कंप्लेन के लिए या फिर मेलिशियस इंटेंट के लिए ना, तो इसका भी सजा है. अगर आपको दोषी पाया जाने से तो आपको सजा होगा फॉल्स ये कंप्लेन के लिए, आपका एक साल का सजा हो सकता है जेल में, या फिर 20,000 का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है. और आप किसी को मिलिशियस इंटेंस मतलब ना किसी का खराब सोच के ऐसे करता है वैसे, तो उसका 2 साल का सजा होता है और 50,000 फाइन होता है, और दोनों भी हो सकता है.
1: किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे ही झूठ मूठ का अगर कंप्लेन कर देगा तो
0: ये एक्चुअली सजा तो सजा होता है, लेकिन आप मोरली भी सोचना है ये सब चीज को, किसी को हरसमेंट करना वो अच्छा बात नहीं है.
1: हाँ, खुद जानना चाहिए कि इसके बाद आपके साथ भी
0: आपके साथ भी बहुत हो सकता
1: है. आपके साथ भी हो सकता है और ये उल्टा पड़ भी सकता है आपके ऊपर. जी,
0: और आपका हम लोग का अफसलसा ना, तो पीछे एक प्रोग्राम रखता है लोक अदालत.
1: लोक अदालत
0: हाँ. तो इसमें क्या कहता है कि लोक अदालत में जब आप कोई भी कंपनेबल केस में सिविल नेचर का जो ना, तो उसमें अगर कोई भी कंपनेबल केस होता है तो इसमें आप प्रेयर डाल सकते हैं दो पार्टीज, साथ में ज्वाइंट पिटीशन भी डाल सकते हैं कि हम लोग ये केस को रिजॉल्व करना चाहता है.
1: अच्छा, हाँ, दोनों मिलके.
0: हाँ, दोनों मिलके, या फिर एक पार्टी भी अप्रोच कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कोर्ट के आगे में. सो इन दैट केस आपका कोर्ट प्रोसीडिंग जो अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग में आ गया तो उसमें भी सॉल्व किया जा सकता है. लोक अदालत है, इसको छूट गया था ना. तो और अभी शायद नेक्स्ट लोक अदालत होगा 15 दिसंबर में 2024 होगा.
1: ओके, 15 दिसंबर 2024
0: में, और एक अभी फोर्थ होने वाला है. तो उसमें अगर आप लोग का कोई रिड्रेसल करना है उनसे आप उसमें भी कर सकता है.
1: ओके, तो 15 दिसंबर से पहले हमको बताना होगा कि हमको ये करना है. तो 15 दिसंबर से वो अदालत शुरू हो गई.
0: आप एलएसी में भी जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, और या फिर लोक अदालत में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मैं ये केस को रिजोल्व करना चाहता है ना, या फिर आपका कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, या फिर प्रीलिटिगेशन स्टेज में चल रहा है, तो आप जज को भी बोल सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कि सिंस ये कंपनेबल केस है ना, सो इसको आप लोग अदालत में डालिए तो हम इसको रिजोल्व करने का कोशिश करें.
1: ओके, जो केस अभी ऑलरेडी चल रहा है उसको लोक अदालत में शिफ्ट किया जा सकता है.
0: कर सकता है पेंडिंग केसेस, लेकिन सिविल नेचर का होना पड़ेगा एंड कंपनेबल जो केस होता है.
1: अच्छा, ठीक है. तो हमारा जो वक्त भी हो चला है, तो आप जाते जाते जो हमारे महिला श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सभी महिला को, अगर आप कहीं भी कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपका कानूनी तौर से आपका साथ इनजस्टिस चल रहा है या फिर हो रहा है, तो आप कभी भी बेझिझक होके हमें कॉल कर सकता है. आप सलसा का जो टोल फ्री नंबर है 15100, इसमें कॉल कर सकता है.
1: इसमें कॉल करके आप सर्विस अवेल कर सकता है.
0: फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल मिल जाएगा. एंड आप सब भी सतर्क रहिए, और आजकल बहुत सारा क्राइम होता है, आप सभी को सतर्क रहना है, खुद भी सतर्क रहना है, इन्वायरमेंट को भी आप सेफ रखना है, खुद को भी सेफ रखो, सबको सेफ रखो. और वुमेन आप लोग तो माँ है, सब बेटी है, एक होम मेकर है, तो सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपसे ही दुनिया आगे बढ़ सकता है.
1: तो जिनके पास कानूनी जानकारी नहीं है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जहाँ पे लीगल एड क्लिनिक है, वहाँ पे जाके हम कानूनी मदद ले सकते हैं बिना किसी खर्च के फ्री में
0: फ्री
1: ये बहुत

0: अच्छी बात है। और एक बार दोहराना चाहूंगी कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के टोल फ्री नंबर है 15100, ये 24 घंटा काम करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह के जो इमरजेंसी है या जो तकलीफें हैं उसको यहाँ कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज लीगल सर्विसेज फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन इस विषय पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ एडवोकेट मिचिता मा। हम आशा करते हैं कि हमारे जो महिला मित्र है उन्हें इस कानून के बारे में या इस सुविधा के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी और आशा करते हैं कि वे जो भी सर्विसेज हमारे लिए अवेलेबल है उसका लाभ जरूर उठाएंगे। और इसी आशा के साथ अपने महिला मित्रों से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे वुमन एंड फैमिली प्रोग्राम मेरी बात एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। आप सब बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी आवाज देश

हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।

एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। तो दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक धुआंधार गीतों के साथ। एंजॉय कीजिए अरुण एफएम को, और जी हां, बने रहे हैं अरुण एफएम के साथ।

0: दोस्तों, इस धुएंदार गीत के साथ ही हमारे हिंदी फिल्मी गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का अरुण एफएम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। और अब वक्त हो चुका है दोस्तों, माफ कीजिएगा, हो चुका है अपना गीत कार्यक्रम का।
1: अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी गैर अत का प्यार भरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत में। जैसे कि हमारे श्रोता जानते हैं कि अपना गीत कार्यक्रम में हम रूबरू कराते हैं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जनजातियों के गीत संगीत। तो चलिए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं इस नुक्ते गीत से, जिसे गाया है चलत वांगसा ने।

दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम इंसान इस रंगमंच के कलाकार हैं। अपनी अपनी भूमिका अदा कर हमें चले जाना है। वाकई में ये दुनिया रंगमंच की तरह ही है। हम कुछ समय जीते हैं, अपना अपना काम करते हैं, कोई बड़ा छोटा, कभी खुशी कभी गम, कोई अमीर कोई गरीब, मगर इतना तो तय है कि सबको एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। कहना ये चाहती हूँ मेरे श्रोता मित्रों कि इस थोड़ी सी जिंदगी को प्यार से क्यों ना जिए, खुद को खुश रखे, औरों को भी प्यार दे। ले देकर यही बात निकलती है कि एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, वही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। जितना हो सके प्यार से रहे, प्यार बांटते रहे, क्योंकि बाबू मुशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, निशी भाषा में बिजनू नाबम की आवाज में।

श्रोता, आप सुन रहे थे वांगचो गीत ताइलाई वांगजेन और हपनाई बोहम की आवाज में। जी हाँ, आपने ट्यून किया है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये अपतानी गीत तापी उका की आवाज में।

दोस्तों, मोहब्बत में लिखा एक शेर बहुत ही मशहूर है। कुछ इस तरह है, खत लिखता हूँ खून से स्याही मत समझना, खत लिखता हूँ खून से स्याही मत समझना, मरता हूँ तेरी याद में बेवफा मत समझना। और उसी तरह हमारा अगला गीत है जिसमें दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारी याद में, तुम्हारे प्यार में मर रहा हूँ मैं, शरीर को देखकर मुझे जिंदा मत समझना। बहुत ही पुराना गीत है, उस जमाने का जब खतों से प्यार की बातें हुआ करती थी। गालो गीत है जिसे गाया है टोनी कोयू और ओमम इरिंग ने।

श्रोता, इसी गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का हमारा ये अंक यही पर समाप्त होता है। एक और नए अंक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के

0: अरुण एफ एम 103.1 MHz। नमस्कार।
1: दोस्तों अभी आप आनंद उठा रहे थे अपना गीत कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, एफएम बैंड के 103.1 MHz पर से, और अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न मेलोडीज के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
0: निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी आवाज देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ईटानगर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, आकाशवाणी ईटानगर इच्छुक उम्मीदवारों से कैजुअल असाइनीज जैसे जनरल अनाउंसर्स और कॉम्पियर्स के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। इस पद के लिए योग्यताएं हैं किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता, रेडियो के लायक आवाज, आवश्यकता अनुसार किसी भी समय पर काम करने के लिए तैयार, उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष और ईटानगर और ईटानगर के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितम्बर 2026। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9436048967 या 9436256547।

दोस्तों अभी आप लुफ्त उठा रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज के प्रोग्राम के साथ, और बहरहाल इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों आपसे बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

जी हाँ दोस्तों, भूले मिश्री गीतों के सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भले ही ये भूले बिसरे गीत क्यों ना हो, लेकिन होते हैं सदाबहार नगमों का कारवां, है ना दोस्तों? तो चलिए हम भी डूब जाते हैं इस नगमों के कारवां में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है। कभी कभी दिल में किसी के लिए ऐसी रोशनी जलती है दोस्तों, जो वक्त के साथ भी बुझती नहीं, है ना? वो एक एहसास, एक याद, एक रिश्ता जो दिल के अंधेरे को भी उजाला कर देता है ना? तो दोस्तों महसूस कीजिए उस प्यार की रोशनी को, जो शायद कहीं आपके दिल में भी आज तक जल रही होगी। एंजॉय कीजिए उस बेहद खूबसूरत सी गीत को।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ, और इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाया जा रहा है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते हैं बल्कि

कि महसूस किए जाते हैं, और जब बात हो उन रास्तों की जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं, तो हर किसी की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से शाम में सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें है सपने, सफर और दिल की कुछ अनकही बातें।

दोस्तों, शैलेंद्र के गाए इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही दोस्तों हमारा आज का जो है भूले बिसरे गीतों का ये सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, चलते चलते जाने कभी ये वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा एंजॉयमेंट प्रोग्राम को लेकर एंटरटेन करने के लिए फिर से हाजिर हो जाएंगे आप सभी के।

खिदमत में कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारे खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सेहतमंद रहे और जी हाँ, अरुण एफएम पर यूं ही अपना प्यार बरसाते रहे। और चलते चलते यही कहेंगे दोस्तों कि इंसान की तरक्की वही अच्छी है जिसमें किसी का अहित ना हो, क्योंकि किसी का अहित आपकी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है ना दोस्तों। तो एक बार फिर हम यही कहेंगे कि आप अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हमसे यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा अरुण एफएम पर। और इसी के साथ ही संचालन निष्पादक गैर एते, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मो तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपना को रुखसत होने की दीजिए इजाजत और आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे एफएम गोल्ड चैनल पर जो कि बस अब आने को है। तो ले लेते हैं हम आप सभी से इजाजत। आपका आने वाला कल मंगलमय हो। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
1: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
2: घोर बेइज्जती
3: है। क्यों भाई, बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के चार दिन देखे ही नहीं है?
2: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया।
4: हाँ। भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
1: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
2: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
3: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।
2: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई। हाँ। और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने दे दी।
4: पर भाई वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ।
5: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
1: अच्छा जोशी साहब।
2: हाँ।
1: हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे,
5: तमीज की कमीज वाले या हमारी तरह के?
2: ये देशमुख पूछो मत, तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा है।
1: अच्छा।
2: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती थी।
5: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
2: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
1: अच्छा।
2: हम भले और हमारा काम भला
1: हो,
2: पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा है।
5: अरे हाँ जोशी जी, कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
2: हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
6: चंपी चंपी बोलो चंपी चंपी चंपी।
1: अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
2: कर्णिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका,

0: अजी साहब, अपने ऑफिस में 4-5 दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
1: कौन सी लड़की?
0: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
2: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
3: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
2: बता रहा हूँ जोशी साहब।
3: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
2: आप भी ना।
4: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ
2: है। चलिए चलिए चलिए, आइए। बस क्यों नहीं आ रही है? जोशी साहब, जोशी साहब।
3: हाँ बोलो बोलो करने।
2: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना, मिस साने। हाँ मिस साने। अजी साहब, वो हाफ मैट है।
3: हाफ मैट?
2: हाँ हाँ हाफ मैट।
3: कैसे?
1: तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने? करने का
2: अजी साहब, बड़ी अजीब लड़की है।
3: अरे आखिर हुआ क्या?
2: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली, उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग करनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाए। और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस। आप ही कहिए, कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो, पगली।
5: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो करणिक।
2: हैं?
5: किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
2: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, हैं? कोई लगती है क्या तुम्हारी? अरे करणिक, वो मांजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
5: देख करणिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं। तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
2: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
5: तो दीजिए ना सबूत।
2: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
5: बापट? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
2: अब
5: करणिक सही कह रहा है।
2: हाँ मांजरेकर, करणिक का कहना सही है, मिस साने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
3: क्या कह रहे हो, मिस साने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
2: अब मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
6: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। भाई कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी।
7: चलो भाई चलो दोस्त।
8: अरे जोशी जी, मेरे पास आ गए।
7: मैं तो
5: अरे भाई अनारकर।
9: जी सर।
5: जरा इधर आओ।
9: जी सर।
5: ये लो ये फाइल बड़े साहब के पास ले जाना, और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
9: जी अच्छा।
10: एक्सक्यूज मी मिस्टर मांजरेकर।
5: जी आपने मुझसे कुछ कहा?
10: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ, क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
5: काम?
10: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ही नहीं मिल रहे, आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
5: किधर? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
10: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
5: जी फाइल कहाँ है?

0: Dici.
1: एक मिनट है. हाँ, ये देखिए, ये रही गड़बड़ी.
0: कहाँ ये?
1: हाँ हाँ हाँ, ये और ये जो, हाँ नीचे, ये है आपके मिसिंग नंबर्स.
0: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए. मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो.
1: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है ये. जल्दी सीख जाएंगे आप. ये आपकी फाइल.
0: थैंक यू.
1: नहीं नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है. एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है. अरे 6:30 बज भी गए. अच्छा मिस साने, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं.
0: मिस्टर मांजरेकर, एक मिनट रुकिए.
1: जी.
0: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
1: मेरे साथ मगर मैं.
0: चलिए मिस्टर मांजरेकर, आइए.
1: जी जी जी.

0: वैसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: नहीं कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा हाँ। मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, है नमस्ते।
0: अब आप कीजिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं? आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: बस गया रे। वो मुझे आज
0: क्यों वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं नहीं वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए हैं।
0: अच्छा
1: जी जी कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मलाटली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई।
3: अरे सचिन बहुत देर लगा दी आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
3: हम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा तू हाथ मुंह धोले, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
1: दीदी
3: क्या हुआ?
1: दीदी अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
3: हाँ नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर। नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
3: अरे उसने काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में
3: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए वगैरह वगैरह। क्यों रे कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
1: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
3: अच्छा अच्छा
1: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
3: ठीक है लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
3: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
3: बस रे तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए।

0: और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी क्या कह रही हो तुम? अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
0: सचिन, अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार रे? हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन, अब तो शादी कर ले, ठीक? कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
0: पगला कहीं का।
1: पगला?
0: अरे
1: हाँ,
0: कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? सच बताऊं, जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
0: क्या?
1: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है। दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
0: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
0: लेकिन सचिन, हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
1: दीदी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के कर्णिक और बापट से उसने पूछा था।
0: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी, तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन।
0: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है, बहुत अच्छी है, बीए बीटी, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
0: हाँ हाँ,
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
0: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है। और हाँ, खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है, आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में 2 साने।
0: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है, बात चलाऊं?
1: लो अभी तो मैं 2-2 साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ। और तुम हो कि 1 साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
0: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर, पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, वे भावरी के घर हुआ।
1: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
0: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
1: ए लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
0: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा, अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से, उसी को लाने के लिए मेरा दूध बनकर चले जाना।
1: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
0: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आ जा।
2: Yes?
1: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
2: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है, आप तो आधा उधर

0: Surekha.
1: Very good memory. Good boy.
0: Thank you.
1: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
0: जी।
1: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ।
0: ओ।
1: अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर। आप भी नहीं खोलना।
0: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
1: हाँ, लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं दीदी कहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
1: ये तो मुझे मालूम है।
0: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
1: क्योंकि मैं होशियार हूँ।
0: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
1: बस अब वो आती ही होंगी। वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
0: एकदम ठीक।
1: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया।
0: हाँ।
1: आप रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
0: मैं यही मुंबई में रहता हूँ, और काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊँ?
1: देखिए, दीदी कहती हैं किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाइए।
0: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
1: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
0: सॉरी सॉरी, भूल गया था।
1: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
0: हाँ।
1: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा है
0: कि बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
1: हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
0: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
1: आपकी भी बड़ों की भी दीदी होती है?
0: हाँ।
1: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांजरेकर।
0: मिस साने,
2: आप यहाँ?
0: आप यहाँ?
2: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
0: देखिए सच कहूँ, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम अब आप मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
1: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है, और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
2: सुरेखा तुम अंदर जाओ। मिस्टर मांजरेकर आइए, अंदर आइए।
0: थैंक यू।
2: आइए बैठिए। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया?
0: स्नेहलता मांजरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
2: स्नेहलता मांजरेकर आपकी?
0: वो मेरी दीदी है।
2: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
0: आपके बारे में।
2: मेरे बारे में क्या
0: सोच रहा था? कि
2: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूँ?
0: जी,
2: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे, और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
0: मैं समझ सकता हूँ, मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
2: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
0: ठीक कहा। दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है।

0: एक बात पूछूं मिस साने
1: जी?
0: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
1: क्या कहती?
0: कहते हैं कि आप
1: पगली हैं।
0: जी
1: ठीक ही तो कहते हैं।
0: यानी सचमुच आप
1: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।
0: मैं समझा नहीं।
1: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से अलिप्त रहने में आसानी होती है। सोचो, अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
0: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
1: मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
0: हाँ? नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
1: मेरे लिए
0: मिस साने, मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
1: और कौन है? बोलो।
0: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला। और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी, एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगी?
1: सचिन,
0: मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
1: आप भी पागल हैं।
0: पागल?
1: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं। और अब तुम भी।
0: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
1: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
0: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं।
1: सचिन,
0: विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
1: अभी?
0: हाँ अभी।
1: ठीक है, चलो।
0: लेकिन वहां हंसने का पागलपन मत करना।
1: हाँ, तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
0: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले।
2: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकरीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन, और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा माइणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ETS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPS के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस ने यह नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेलिन वलरविन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक

जीता था। एलावेनिल वलावरिन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्य समाचार। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे। एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। ईरान ने कहा, अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजरानी संबंधी शर्तों को पूरा करने तक हार्मुज डबलू मध्य बंद रहेगा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला मौका है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरितो ने भारतीय मेहमान नवाजी की तारीफ की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। इस अभ्यास के तहत दोनों देशों के वायु सेनाएं काल्पनिक युद्ध परिस्थितियों के जरिए अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। एक रिपोर्ट।
1: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के

0: ये दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये ताजा हमले ऐसे समय में हुए हैं जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस दौरान क्रीमिया में भी मतदान हुआ, जो कि एक ब्लैक सी प्रायद्वीप है और साल 2014 में यूक्रेन के साथ संघर्ष के बाद से रूस के नियंत्रण में है। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें अंदेशा है कि रूस जिस तरह पूरे यूरोपीय महाद्वीप में अपने हाइब्रिड अभियान को तेज कर रहा है, उसे देखते हुए वो आने वाले समय में नाटो सदस्य देशों पर भी ड्रोन या मिसाइल हमला कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र से पहले जारी एक संदेश में श्री गुतरेश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संवाद और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। श्री गुतरेश ने कहा कि महासचिव के रूप में ये उनका अंतिम संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र 22 से 28 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों और जहाजरानी संबंधी शर्तों को पूरा करने तक हार्मूज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिफाफ ने यह टिप्पणी की। श्री कालिफाफ ने कहा कि ईरान संघर्ष और बातचीत दोनों जारी रखेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद की है। वहीं हूती हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
1: शिवा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वालरिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेनिल वालरिवन, सोनम मस्कर और विद्रसा विनोद की टीम ने देश को ये पदक दिलाया। उधर अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज़्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीम ने अपने अपने मैच जीते। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले आई अचानक विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 लोग अब भी लापता हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर